फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक हिंदी और संस्कृत

0: लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
3: अपने आसपास, अपने समाज में युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच सामंजस्य की कमी स्पष्ट नजर आती है। युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग उन्हें समझते नहीं, उनके दृष्टिकोण को देखने का प्रयास नहीं करते। बुजुर्गों का कहना है कि युवा उनके प्राधिकार को महत्व नहीं देते, नहीं उनके तजर्बे से कुछ सीखने का प्रयास ही करते हैं। ये समस्या इतनी विकराल है कि हर उस घर में जहां एक युवा और उसके बुजुर्ग साथ हो।

0: वहां इस बात को लेकर अशांति सदैव बनी रहती है। दुख की बात यह है कि बजाय इस विषय पर मनन करने के, हम अक्सर परिस्थितियों से उत्तेजित होकर अपना क्रोध और क्षोभ प्रकट करते हैं, परिवार का वातावरण और बोझिल बना लेते हैं। कई परिस्थितियों में हम अपने कर्तव्य से सिर्फ ये कहकर ही छुट्टी पा लेते हैं कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है, ये तो जेनरेशन गैप है, उम्र की दो पीढ़ियों की ये दूरी तो युगों से है, इसे पाटना आसान नहीं। बुजुर्ग पीढ़ी को आज का युवा बदतमीज, उच्छृंखल और अति स्वच्छंद नजर आता है। उसकी हर चीज आपत्तिजनक नजर आती है। घुटने पर फटी उसकी जीन्स, बेपरवाह पहनी गई टी शर्ट, गले में अजीबोगरीब किस्म के लॉकेट, बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, सिर पर पहनी गई उल्टी कैप तो नजर आती है, लेकिन व्यवस्था से उसे होती तकलीफ को हम नहीं देख पाते। साथ ही आत्मविश्वास का जो विशाल स्रोत उसके अंदर है वो तो हमें नजर आता ही नहीं, उल्टे हम उसके इस आत्मविश्वास को मंद करने के भागी होते हैं। आज का युवा असीम ऊर्जा और शक्ति का ऐसा भंडार है जिसे यदि सही दिशा दी जाए तो देश का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। दुर्भाग्य से उनके अपने ही घरों से उन्हें पर्याप्त और उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। समाज तो एक तरह से उन पर असफल इकाई का ठप्पा लगा ही देता है। यदि बुजुर्ग एक बार खुद को युवाओं की जगह रखकर देखें तो उनकी असहाय स्थिति का अंदाजा वे स्वयं ही लगा सकते हैं। युवा उम्र के उस मोड़ पर होता है जब बच्चों में उसे गिना जा नहीं सकता और नहीं बड़ों में। वे खुद भी जानते हैं कि वे अब बच्चे नहीं, और ये भी जानते हैं कि बड़ों में उनका शुमार नहीं होता, लेकिन वे फिर भी इसी उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें अपनी सामर्थ्य, शक्ति और ऊर्जा को सही माध्यम से उत्सर्जित करने का अवसर मिल सके। परिवारों में संवादहीनता की स्थिति युवाओं और बुजुर्गों के बीच की दूरी को और बढ़ाती है। यदि समय निकालकर दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो तो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में आसानी होगी। क्या कारण है कि एक युवा अपने पिता के सामने सहज नहीं हो पाता और वही युवा अपनी मां से सभी बातें कहता है, सब कुछ उसे बताता है, हर बात उससे पूछता है, उसकी सलाह भी लेता है, उसकी सलाह पर अमल भी करता है। यदि अपने पिता से भी वो सहजता से ऐसी ही स्थिति बना पाए तो ये समस्या हल हो सकती है। दिक्कत यह है कि कहीं कोई हिचक इस आड़े आती है, या फिर हमारे अहम की भावना। केवल यही आवश्यक नहीं कि बुजुर्ग ही युवाओं का दृष्टिकोण समझें, युवाओं को भी बुजुर्गों की नजर को समझना पड़ेगा, उनकी सदाशयता, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा। जब ये संवादहीनता की स्थिति दूर होगी तभी ये जेनरेशन गैप भी दूर हो सकेगा। जरा सोचिए, युवाओं के पास मात्र शक्ति और ऊर्जा होती है, बुजुर्गों के पास गहरा अनुभव और तजुर्बा। इन दोनों का जब संगम होगा तब वो युवा पीढ़ी सही मायनों में देश के भविष्य को संवारने में सक्षम होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:10 हुए हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना आइए आप सुनते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कबीर के लिखे कुछ भक्ति गीत। सबसे पहले सुनिए MS सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में ये भजन।

0: पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा।

0: भुवनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
1: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़।
3: प्रमाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS Care App।

लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं। सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, विषय है पशुओं में संक्रामक गर्भपात के कारण।

संगी हो, राम राम, जय जोहार। आज के हमन चर्चा में जानबो कि पशुपालन में कैसे आप मन लाभ ला बढ़ा सकते हो। संगी हो, देखा खेती किसानी में का है, लाभ तो होत रहते, लेकिन अगर बात करथन पशुपालन में भी तो बढ़िया इनकम पाए बर हमन ला का करना चाहिए, बढ़िया से पशुपालन करना चाहिए। उन्नत नस्ल के बकरी पालन है या जो भी भेड़ पालन है या गाय पालन है, ओमा नस्ल के बहुत महत्व रहते। और साल भर में बढ़िया अगर प्रजनन क्षमता हावे पशु मन के, तो आप मन के पशु से बढ़िया इनकम लाभ हो सकत है। ऐसने में पशु मन में होय वाला एक टन संक्रामक जो रोग होते, उवर होते संगवारी हो संक्रामक गर्भपात के, तो एकर कारण का होते, एकर कारण कई ठन कारण से होते संगी हो, तो एकर लक्षण का दिखते जो गर्भावस्था के अंतिम 3 माह के दौरान गर्भपात हो जाते, और पशु में गर्भपात के पश्चात जेर हर रुक जाते, जेकर कारण ले सड़े ले पशु के मृत्यु तक को भी हो जाते। पशु के जो जोड़ हावे तेमा सूजन भी आए लागते। तो संक्रामक गर्भपात के अगर बात करथन, तो एकर नियंत्रण और रोकथाम के उपाय ये हावे कि रोग ले बचाव बर 4 ले 8 महीना के बछिया ला टीका लगवाना चाहिए। बछड़ा मला नहीं, सिर्फ बछिया मला लगते संगी हो। रोगी पशु ला स्वस्थ पशु ले अलग करना चाहिए, और जो भी गिरे हुए भ्रूण हावे जेर हावे वो संपर्क में माई से वस्तु मला जला देना चाहिए, या गड्ढा गाड़ के ओकर ऊपर में चूना डाल के ओला दबा देना चाहिए। नहीं तो का होते संगी हो, ओकर जो संक्रमण रहते, ओकर विषाणु रहते, वह तीव्र रूप से फैलते। रोगी पशु के बाड़ा जो भी जगह रहते जहाँ गर्भपात हुई से, वो स्थान बढ़िया से फर्श ला सफाई करके वहाँ कीटाणुनाशक घोल से धो करके साफ सफाई करना चाहिए। रोकथाम में यही है कि संगी हो, 4 ले 8 महीना के भीतर माँ जो बछिया रहते ओला टीका लगवाना चाहिए, एकर ले संक्रामक गर्भपात की समस्या नहीं हो। उपचार पर यही है कि संगी हो, रोकथाम में हमला टीकाकरण करवाना है, जीवन में एक बार 4 ले 8 महीना के बीच में टीका लगवाना है, और संक्रामक गर्भपात ले आजीवन छुटकारा पाना है। खास बात ये संगी हो कि आजकल नस्ल सुधार के तकनीक आगे से कृत्रिम गर्भाधान जो ला कहा जाते, कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक ला अपना करके किसान भाई उन्नत नस्ल के बछिया पा सकत है। बछिया के संगे संग अगर गोरस उत्पादन पर चाहत है कि मैं गोरस उत्पादन में वृद्धि करना चाहता, तो एकर से भी का है संगी हो, बढ़िया से उन्नत नस्ल, जैसे कि हमन बात करथन जर्सी के बात करथन, या रेड सिंधी के बात करथन, या एचएफ की बात करथन, बहुत बढ़िया नस्ल के प्राप्ति होते। आजकल तो ऐसे ऐसे तकनीक आ गए ना जेकर से बछिया भी उत्पादन होते, तो एकर से हमन ला पशुपालन विभाग से संपर्क करना पड़ी। कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक से उन्नत नस्ल के आप मन पशु पा सकते हो, रोग ओकर प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया रहते, खाए पिए के यानी लागत में भी कमी आते, और खास तौर से ये है संगी हो कि हमला जो कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक है, ये तकनीक में जो ओकर गर्मी के प्रक्रिया रहते ओला हमला ध्यान में रखना चाहिए। गर्मी में का है संगी हो, जो 24 घंटा तक रहते एमा 12 से 18 घंटा के भीतर यानी 12 से 18 के बीच में अगर हमन ईआई कराथन, कृत्रिम गर्भाधान कराथन, तो पशु में गाभिन होए के संभावना ज्यादा बढ़ जाते। तो हमला ओकर लक्षण देखना है, पहचानना है, बार बार रंभात है, चिल्लात है, पेशाब करत है और दस्त करत है, दूसर पशु ला चढ़े के प्रयास करत है, अचानक से ओकर खान पान में बदलाव आई से, गोरस उत्पादन में भी अचानक से बदलाव आई से, तो हमन ला जानना चाहिए कि कृत्रिम गर्भाधान के बर ओहर संगवारी हो तैयार है गर्मी में आई से। तो ये सब चीज ला आप मन अपना करके बढ़िया पशुपालन से इनकम लाभ अर्जन कर सकते हो।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे रामचरित मानस 6:40 पर। 6:50 पर होगा कार्यक्रम देश गान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम सुनिएगा 7:35 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर हम लेकर आएंगे 7:45 पर। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से 9:00 11:00 12:00 से 5:00 तक लगातार और 9:00 से 10:00 तक। सुगम संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 10:30 पर। अब सुनिए हमारे शाम के कार्यक्रमों के बारे में। 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शामी गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेत्रदान भ्रांतिया और तथ्य। साथ ही सुनिएगा क्रम गैर फिल्मी गीत। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में 6:20 पर, 7:00 और 8:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकते हैं 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाएं खेती की लागत घटाएं, इस विषय पर चर्चा और नसीहत का विषय होगा नकली खाद की पहचान की सामान्य विधि। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। 8:20 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। विविध संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से सुनिएगा 10:00 और 10:30 पर। हम आपको सुनवाएंगे फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स
2: हाँ जरूर। आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड पर। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है राम

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

मानस गाना अभी आप सुन रहे थे 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश का 100.7 MHz पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86-1000+ जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27-200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुमद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतन वृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तर क्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 हराया। ये अभी का 13वां और इस वर्ष का 2रा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में। नितिन रायकवार की रचना है, धुन बनाई है संदीप चौथा ने और फिल्म है मस्त

0: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुवनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
1: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: काशीनाथ,

0: अलका याग्निक, शंकर महादेवन और अनु मलिक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे घातक फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था राहत इंदौरी ने और संगीत से सजाया था अनु मलिक ने।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अगली पेशकश में आप सुनेंगे दिल मांगे मोर फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, समीर की रचना है और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

मोहम्मद इरफान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे एक विलन फिल्म का ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अंतिम पेशकश में आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के बोल हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। और आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और लगातार बदलती जीवन शैली, इन सब का असर हमारे मन और शरीर पर पड़ सकता है। ऐसे समय में योग हमारे लिए एक सरल और उपयोगी जीवन पद्धति बन सकता है। श्रोताओं, योग केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं है। योग शरीर, मन और श्वास के बीच संतुलन स्थापित करने का अभ्यास है। नियमित योगाभ्यास से हमें अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक बनने में मदद मिलती है। दोस्तों, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मन लगातार विचारों में उलझा रहता है। ऐसे में कुछ समय शांत होकर बैठना, धीरे धीरे गहरी सांस लेना और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, योग में प्राणायाम और ध्यान का विशेष महत्व है। नियमित और सही तरीके से किया गया श्वास अभ्यास हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। वहीं श्रोताओं, ध्यान हमें कुछ समय के लिए अनावश्यक विचारों से दूरी बनाकर वर्तमान क्षण पर ध्यान देने में सहायता करता है। दोस्तों, योग का अभ्यास करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो योग शुरू करने से पहले प्रशिक्षक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है। श्रोताओं, तनाव को दूर करने के लिए केवल योग ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली की भूमिका होती है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, परिवार और मित्रों के साथ बातचीत तथा अपनी पसंद के काम के लिए समय निकालना भी मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, तो क्यों ना हम आज से अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट योग और श्वास अभ्यास के साथ करें। दोस्तों, सुबह की ताजी हवा, शांत मन, नियंत्रित श्वास और नियमित योग से छोटी छोटी आदतें हमारी दिनचर्या को अधिक संतुलित बनाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। दोस्तों, योग अपनाएं, श्वासों को साधें, मन को शांत रखें और तनाव को दूर भगाएं। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नियमित योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और अब बारी है एक प्यारे से गीत की।

0: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुवनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
1: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर आइए अब सुनते हैं। गायक कलाकार हैं तोरण चंद्राकर और सविता साहू।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagah यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। विविध भारती कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00, दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। 10:10 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम पेश करेंगे 10:30 पर। शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शामी गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। 5:30 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेत्रदान भ्रांतियां और तथ्य, नेत्रदान पखवाड़ा। साथ ही सुनिएगा क्रम गैर फिल्मी गीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम हम पेश करेंगे शाम 6:20 पर, 7:00 और रात्रि 8:30 पर। चौपाल कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाएं, खेती की लागत घटाएं। और नसीहत में चर्चा का विषय होगा नकली खाद के पहचान की सामान्य विधि। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टीप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत हम पेश करेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:00 और 10:30 पर हम पेश करेंगे फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8:00 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।

0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें।

0: ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
3: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
4: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
5: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 से दोपहर 1 तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले

0: गया छरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0111-3104-8-0111-3104-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान। 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत। जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत। 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची। सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than

अभी आप सुन रहे थे शोभा गोटू के स्वर में राग चैती। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उनका गाया राग ठुमरी मिश्र भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं आपको बता दें

कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि इनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनू विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की तलाश प्रमुख रही। अमृता प्रीतम आज भी अपनी संवेदनशील और बेबाक लेखनी के कारण साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

0: अभी आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, शेखर रविजियानी, उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार अन्विता दत्त, संगीतकार विशाल शेखर।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की और संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। कार्यक्रम चित्रलोक में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना योद्धा फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज, गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार तनिष्क बागीची।

अभी आपने सुना डेढ़ बीघा जमीन फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल की आवाज, गीतकार अर्को और संगीतकार अर्को। तो दोस्तों, समय चितलो कार्यक्रम का अब धीरे धीरे

समाप्ति की ओर है। तो आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार दीजिए, कार्यक्रम से इजाजत, और सुनते हैं अगले प्रोग्राम को। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम

0: बातें कर रहे हैं। हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहगल से।

पढ़ाई खत्म करके के एन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आई। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है, पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गई। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे

से के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे, तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

केएन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। केएन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने केएन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सुनार संसार का हिंदी संस्करण बना रही थी। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए केएन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और केएन सिंह जम गए। केएन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से केएन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जगह डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: अरे जिंदा तो है अभी। देख पंचनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ जल्दी।

0: पर ये काम तो खत्म हो जाए। तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो, हाँ? ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा।
1: जरा मेरा हाथ बुलाइयो भाई।
2: ओहो मगर कहाँ जाओगे वैजी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: नगीने शादी? बैजी बैजी बैजी।
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची ही शादी करा दो, क्यों बैजी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैजी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैजी भगवान देखो जरूर है।
0: जो?
2: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
3: बैठी है थोड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपने अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोकाफ के परी को उठा ला।
4: शक्ति सामंत को K.N. सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, K.N. सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से K.N. सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर K.N. सिंह एक छोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: अरे वाह, अरे वाह वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम

किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9:55 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमीर राव के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्कॉलर और पास होने वाले छात्र शामिल होंगे। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए आज नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी के 8वीं किश्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। साथ ही टिन पोर्टल और ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग 31 अगस्त से 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय

0: बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन जिलों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की है उनमें बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले शामिल हैं। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित करने की आज अंतिम तिथि है। योजना के तहत नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, गीत वादन, शिल्प, पारंपरिक पाक कला और सौंदर्य कला से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष 12,000 से 24,000 रूपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पात्र कलाकारों को चिन्हारी पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 10:10 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शामी गजल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:10 पर। 5:30 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेत्रदान, भ्रांतियां और तथ्य। साथ ही सुनिएगा क्रम गैर फिल्मी गीत। शाम 6:20 पर, 7 बजे और रात्रि 8:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। किसान बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाएं, खेती की लागत घटाएं। और चर्चा का नसीहत में चर्चा का विषय होगा नकली खाद के पहचान की सामान्य विधि। साथ ही सुनिएगा क्रम आज कटी पांच का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। रात्रि 10 बजे होगा विविध संगीत कार्यक्रम और 10:30 पर हम पेश करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage badhane ke liye. Ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नॉवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रचार हुआ प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति देश के लिए प्रेम देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय।

0: माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली,
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल,

0: कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं आलिशा चिनाय का गाया ये गीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। कार्यक्रम सुगम संगीत का अंतिम गीत आइए सुनते हैं नाजिया हसन के स्वर में।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं 100.7 MHz पर। 10:30 हुए हैं, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। मजरू की रचना है और तर्ज बनाई है SD बर्मन ने। फरमाइशकर्ता नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवहाकर, निर्मला विशाल नहवाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुहरकर। इसी गीत के लिए हमें ईमेल किया बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू, डुमर राव बिहार से W अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चांदी चौक गंडई पंडरिया से हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र रौनक सेन, पुरानी खपरी बलौदा बाजार से केशव प्रसाद साहू, अनीता अनुष्का उषा साहू, रिगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुवनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
2: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: किधर है?
4: बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट।
3: ये तो झटपट काम है।
4: कैसे?
3: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
4: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
5: RBI कहता है
6: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
7: अगला ईमेल हमें किया है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, लचनपुर से है रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। ये सभी श्रोता साथी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने। गीतकार है नक्श लयालपुरी और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है

0: उत्ता रायगढ़ एट जीमेल डॉट कॉम SHROTARAIGARH यानी श्रोता रायगढ़ एट जीमेल डॉट कॉम।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत आइए सुनते हैं, साजन फिल्म से। आवाज है अलका याग्निक की, रचना है समीर की और इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। पसंदकर्ता राजीव गांधी नगर रायगढ़ से मनोज कुमार यादव, सोनम, विशाल, ज्योति, साक्षी, जयप्रकाश यादव, रामलाल यादव। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, लल्लन मिश्रा। ढोली सकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी, ददरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ

0: ₹50 महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: श्रोताओं, यदि आप भी अपनी फरमाइश पर गाने सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़, पिन नंबर है 496001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए सब्जेक्ट में लिखिए कार्यक्रम का नाम, गाने के बोल और हमें shrotarayagadh@gmail.com पर मेल करिए। हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की। समीर का लिखा यह गीत है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। पसंद करता है बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, तन्मय और अनिष्का गजभिये। मंदिर रोड नई दिल्ली मोतीनगर से है मानसी गौरव, अनिल, कविता अरोरा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखा वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश, कार्तिक, संजना, परी और ललिता नारायण खर्ची।

इस गाने के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। सलमा की ओर से नमस्कार। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल। कलाम है मशहूर शायर मोमिन खान मोमिन का।
1: रंग

तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कार्यक्रम है रंग तरंग। लीजिए सुनिए एक एल्बम सॉन्ग अलीशा चुनौई की आवाज में। म्यूजिक है बिद्दू का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अगला गैर फिल्मी गीत है लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुना जाए फाल्गुनी पाठक की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने। एल्बम का नाम है याद पिया।

जेरेमाई जैक्सन अदनान समी की आवाजें हैं अगले गीत में. इस गीत को लिखा है इरफान सिद्दीकी ने, संगीत है अदनान समी का, एल्बम का नाम है एक लड़की दीवानी सी.

साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है शान की शानदार आवाज में। गीत है विशाल ददलानी का, म्यूजिक कंपोज किया है विशाल शेखर ने। एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

आइए सुने अगला गैर फिल्मी गीत शोभा मुदगल की आवाज में। रचना है अनिल पांडे की, संगीत रचना संदेश शंडल्य की, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

हर तरफ धुंध है, जुगनू है, ना चराह कोई पहचानेगा। बस्ती में अगर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गुलुकार गुलाम अली की आवाज में समात कीजिए शायर मोइन नजर का कलाम। एल्बम का नाम है तेरे शहर में।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है गायक और संगीतकार भूपेंद्र हजारिका की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, एल्बम का नाम है मैं और मेरा साया।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर।
1: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंद्र का।
1: भूले छी निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

0: चांद भी है।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी के 8वीं किस्त में 20 खनिज ब्लॉक शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। साथ ही टिन पोर्टल और ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई में सफल उम्मीदवारों के लिए रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली मध्य प्रदेश के सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पदों के लिए उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सेना पुलिस पद के लिए 14 अक्टूबर को रिपोर्ट करना होगा। योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट और उनके ईमेल पर भेजे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में स्वाइन फ्लू H1N1 के 10 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 105 से बढ़कर 115 और एक्टिव मरीजों की संख्या 18 से बढ़कर 28 हो गई है। राजधानी रायपुर में 3 नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 54 हो गया है, जबकि सक्रिय मरीज 6 से बढ़कर 9 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खुद से दवा न लेने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, गरियाबंद, कोरबा, बिलासपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा में ऑरेंज अलर्ट है। यहां भारी बारिश होने की आशंका है। इसी तरह बालोद, धमतरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही

0: मुंगेली और सूरजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी समाचार बस थोड़ी ही देर में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की पांचवी

शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ यादगार सदाबहार गीतों की माला से। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जीएल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध

0: भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

मस्ताने का इश्क है दीवाने का और तीर होता है निशाने का मेरी तो

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में।

0: घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है शर्मीली।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में हमारे हम सफर बनकर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के आगाज में एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि आज की इबारत क्या है। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार यहाँ जो ना करे वो खाक जिए खाक मरे, मर के भी जो ना मिटे ये वो दीवानगी। दूर रहे पास रहे दिल में तेरी प्यास रहे, प्यार के बिना ये भी कोई जिंदगी है। इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है यह गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियां ये बागपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर जाएगी, मेरी याद तेरा दिल तड़पाएगी, तौबा तौबा फिर क्या होगा। आखिर तो आप फूल हैं फौलाद नहीं, अरे बुलबुल है किसी बाग की सयाद नहीं। शमा के परवानों को इस घर के मेहमानों को कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को, कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिल वाले क्यों घबराए।

सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो

उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

मोहब्बत रूह का वो नूर है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। जो इस आग में ना जला उसने जीना ही कहाँ सीखा। ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेमपूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात। और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में, यानी कि अमर अकबर एंथनी में, उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं। और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे, इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं, हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत, जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रेष्ठ वही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए।

कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए। कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी? कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं? हम भी तो जाने, हम भी तो सुने। लिख भेजिए हमारे FB पेज पर, क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप? कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया, केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज़ से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्मकर्म, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो

फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि 4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध, इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों, अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदीवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था, तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माता जी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आईं और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या हैं, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

Τι μου, τι

साथियों हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस, अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू।

एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख उन्हें और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं, किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है। चलो।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं। फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम। और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्र

0: संप्रदाय में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली

0: के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना, वो बहुत जरूरी है। बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही।
1: दो लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था, और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आंखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से

0: प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृत वाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
1: जी
0: जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी
1: जी
0: आज तो आपकी छुट्टी है,
1: हाँ
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
0: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं, आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने

0: दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींचकर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
1: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
0: क्या?
1: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
0: अच्छा, वो क्यों भला?
1: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
0: ये कैसे भला?
1: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
0: हाँ,
1: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टॉलीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।
0: तो
1: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
2: अब आप जाइए।
1: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
2: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
1: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहाँ से।
2: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
1: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला

0: कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुले थे, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले ही चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
1: ओहो, ये बात है भिकू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे,
1: अच्छा,
0: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
1: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती से। अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी ममता जी।
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
1: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर ये टिका होता है। जो रिश्ता है

0: पति पत्नी का, कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास। ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है। लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी नहीं है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज़ और है ममता जी, कि जो चीज़ आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग 2 का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया। और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं, और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीज़ों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीज़ें हैं ना घर में चीज़ों को और क्लेश बना देती हैं।
1: मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहाँ कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम

0: इनको टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है. एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं. बात यहां बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है. कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए, बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है. कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं. और कई बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं.
1: बहुत सही कहा आपने. और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं. भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी. यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन

0: हमें
1: पर अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी।
0: अच्छा। तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है, ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए, और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
0: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है श्रोता ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
1: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
0: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कितना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
1: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
0: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है, चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें।

0: जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
1: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है।
1: जी
0: चलिए बताइए। तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफोरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या है वो दो तरह से होती है। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है?
2: यस।
1: या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाल।

0: नहीं जा सकता।
1: एक भ्रम है लोगों में
0: अच्छा
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है,
0: ओके।
1: ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता है
0: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो
1: तो
0: जाएगी।
1: जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है,
0: ओके।
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, स्टेज वन स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
0: बहुत बड़ा चांद है सिर
1: बहुत
0: पर बहुत बड़ा चांद है
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी ओके।
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है,
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला
1: जेनेटिक
0: भी
1: है,
0: तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट बिल्कुल। अच्छा ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
1: तभी तो
0: चाहेंगे।
1: उससे विज्ञापन करते हैं विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
0: हाँ कि ये रिचनेस आती है फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं, ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
0: जी जी
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
1: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
0: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह क्या झाग वाला शैम्पू है।
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
0: जी
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चले जाएगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
1: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें सा का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से,
0: ओके,
1: तो ड्राई नहीं होते हैं।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर

0: सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए। उसको बोलते हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है, वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं, एक माहौल रहता।

0: था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे. रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे है जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला इकोसिस्टम,
1: हाँ जी,
0: वो तेल से मेंटेन रहती है.
1: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक
0: है. तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था. तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है.
1: जी
0: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: इकोसिस्टम के हिसाब से. अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
1: रूखे हो जाते हैं.
0: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए. लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है. तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं. तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है.
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए.
0: हफ्ते में 2 से 3 बार. आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो. और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल.
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है. आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया, तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला.
1: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
0: ये होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
0: दूसरा, मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है.
1: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए.
0: जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है. सर के स्किन को तेल लगाते हैं, वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया है. अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे. सुनते हैं ये गाना.

0: या बट ये आपका फैशन है
1: जी,
0: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
1: राइट?
0: आपको चलने वाला है?
1: नहीं
0: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
1: जी।
0: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए? गो अहेड।
1: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो,
0: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे यंगस्टर
1: ट्रेंड के साथ चलना,
0: ट्रेंड के साथ चलना। तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है।
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
1: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
1: जी। उसको रोक सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें। तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और अमोनिया से फ्री कलर,
0: डैमेज कम हो जाता है
1: जी,
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ,
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
1: तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए, ये शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।

0: अच्छा,
1: मतलब आपको लगता है कि अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो, बट पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना. आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं. इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए.
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना है जी, ये एक थंब रूल हो गया.
1: थंब रूल मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और बहुत परेशान हो जाते हैं.
0: हाँ हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है.
1: बहुत बड़ा मुद्दा
0: है. यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है ना.

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वल्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: यस।
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: यस,
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट। और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको, रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने के टाइम रहता है 6 से 9 महीना
0: जी।
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल
0: बालों के, पौधे को यहां से हटा के
1: वहां लगा दिया
0: जी। जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
1: इतना सब करना पड़ता है
0: जी।

0: एलोपेशिया एरेटा, अभी एलोपेशिया एरेटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है. इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं. ये 5-6 साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है.
1: जी, जी, जी.
0: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है. तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है.
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है.
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी.
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस

0: जैसे हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में. तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए. साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है. खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है. तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है. फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है. ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही, जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं.
0: जी,
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है.
0: बिल्कुल.
1: और सोना,
0: नींद,
1: मॉर्निंग से हो गया अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है. आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ. आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो.
0: जी जी.
1: तो वो नहीं ठीक है. ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा. बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है. बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं.
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है. डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: धन्यवाद.
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं. जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं. बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना. अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में. आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ. तो सुनते रहिए सेहतनामा. कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये दुप्पी, चौरा, मरकाडाण, लोधीडाण, आबादी, बिशुनपुर, सिलाजू, डारी, कोटराही, पोखरा, गुरमुटी, चिनिया, महावीरगंज, कनक पुर, रामपुर, बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंडरा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, चकेरी, बासेन, परोगिया, घाटबर्रा, घासीडी, सरगा, बोड़ाझरिया, सिहारजोर, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चुंदी, कुंजारा, पाकर टोली, श्री टोली, उपका पानी, बंद

0: चूंगा लोढ़ा आंबा डोडा पानी साही डांड बजरा नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल धरमजयगढ़ बोरो बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आम गांव गेरसा उदउदा पोटिया आमापाली नागदरहा कूड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतल में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी जाम पानी साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान जडगा एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा सिटी पखना फुलसर कोरबी झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया बरकछार चक्रधरपुर धुमा बहाल नागदरहा कया कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी गुड़ागढ़ अचानकपुर तेंदुचुआ पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोला पारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम गजल। 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेत्रदान भ्रांतियां और तथ्य। सुनेगा चर्चा जुग जुग जियो अभियान गैर फिल्मी गीत और सुनेगा चर्चा तैयारी में ही समझदारी है भूकंप से सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00। 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाएं खेती की लागत घटाएं। सुनिएगा नसीहत नकली खाद के पहचान की सामान्य विधि। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9:00 विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। विविध संगीत आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि 10:00 और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध,

तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी श्रोता रायगढ़ @gmail.com।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए गजलों का कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम शामे गजल में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के गाए हुए इस गजल को, शायर हैं बशीर बद्र।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
7: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
6: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
8: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
9: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: कार्यक्रम

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत

0: चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
1: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं मेहंदी हसन के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं साहिल हमदवी।

मेहंदी हसन के गाए हुए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम शामे गजल अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज के युवावाणी प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा, और आज की बातचीत है एक ऐसे विषय पे जिस पे हम बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है नेत्रदान की, हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि नेत्रदान करने से कहीं चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा, या क्या चश्मा लगाने वाला व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, या उम्र ज़्यादा हो तो क्या नेत्रदान नहीं किया जा सकता, या क्या नेत्रदान के बाद आँखें किसी दूसरे व्यक्ति को वैसे ही लगा दी जाती हैं क्या। आपके मन में भी इसमें से कोई सवाल आया होगा, अगर हाँ तो आज की बात आपके लिए ही है। क्यों दोस्तों, नेत्रदान पखवाड़ा सिर्फ नेत्रदान करने की अपील करने का मौका नहीं है, बल्कि ये समय है उन गलत फहमियों को दूर करने का जो कई बार हमें एक नेक काम के बारे में सोचने से ही रोक देती हैं। तो आज कोई लंबी चौड़ी मेडिकल भाषा नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बात करेंगे भ्रांति क्या है और असल में तथ्य क्या है। सबसे पहले वही सवाल जो शायद सबने ज्यादा लोगों के मन में होता है, क्या नेत्रदान के बाद मृत व्यक्ति का चेहरा खराब हो जाता है? तो नहीं दोस्तों, ये एक आम भ्रांति है। नेत्रदान एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है और इसे पूरी सावधानी और सम्मान के साथ किया जाता है। इसका मकसद मृत व्यक्ति के चेहरे का स्वरूप बिगाड़ना नहीं है, इसलिए सिर्फ डर की वजह से नेत्रदान के विचार को छोड़ देना सही नहीं है। अब अगला सवाल, क्या नेत्रदान में पूरी आंख निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति की आंख में लगा दी जाती है? नहीं, यह भी एक गलत फहमी है। नेत्रदान से मिलने वाला कार्निया यानी आंख के सामने वाला पारदर्शी हिस्सा जरूरतमंद व्यक्ति की दृष्टि बहाल करने में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए नेत्रदान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बात पूरी आंखों को किसी और की आंख में लगाने की नहीं है।

कार्निया का हिस्सा आंखों में लगाया जाता है। अब आते हैं चश्मे पे। अगर आपको चश्मा लगा है तो क्या आप नेत्रदान नहीं कर सकते? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए खुद को नेत्रदान के लिए अयोग्य मान लेते हैं क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है या वे चश्मा पहनते हैं, लेकिन किसी इंसान के नेत्रदान के योग्य होने या न होने का फैसला केवल चश्मा लगाने से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकीय जांच और निर्धारित मानकों को देखा जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फैसला खुद से मत कीजिए, सही जानकारी के लिए विशेषज्ञ से पूछिए। अब उम्र की बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि नेत्रदान केवल कम उम्र के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उम्र को देख के ये तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के नेत्रदान से मिले ऊतक उपयोग किए जा सकते हैं या नहीं। अलग अलग मामलों में विशेषज्ञ जांच के बाद ही निर्णय लेते हैं। मतलब साफ है, उम्र को लेकर बनी धारणा के कारण पहले से ही ये मान लेना कि मेरे आंख तो काम के नहीं होंगे, ये सही नहीं है। एक और सवाल, अगर किसी व्यक्ति को आंखों से जुड़ी बीमारी रही हो तो क्या वो नेत्रदान नहीं कर सकता? ये भी एक ऐसी बात है जिसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग बीमारियों और परिस्थितियों के अलग अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए इस बारे में भी किसी की सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने के बजाय संबंधित विशेषज्ञ या अधिकृत नेत्रदान संस्था से जानकारी लेना ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों, यही तो नेत्रदान पखवाड़े का सबसे बड़ा संदेश है कि अफवाहों पे नहीं, सही जानकारी पे भरोसा कीजिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान की इच्छा रखता है तो अपने परिवार को इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। परिवार को जानकारी होगी तो जरूरत पड़ने पे समय पे संबंधित संस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था से संपर्क किया जा सकता है। और युवाओं, यहाँ हम सबकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास जागरूकता है। हम अपने साथ बाकियों को भी आसपास के लोगों तक नेत्रदान की भ्रांतियों से संबंधित बातें समझा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं नेत्रदान करने के लिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात, और आज है महीने का पांचवा सोमवार, जिसमें रहता है क्रम गैर फिल्मी गीत का। तो चलिए बढ़ते हैं क्रम की ओर में इस गीत के साथ, जिसे गाया है पलक मुच्छाल ने। इसके गीतकार हैं उत्कर्ष शर्मा, संगीतकार हैं सतीश त्रिपाठी।

दोस्तों, अगले गीत से पहले चलिए करते हैं कुछ चर्चा। और आज की हमारी चर्चा का विषय है जुग जुग जियो अभियान। नाम सुनते ही मन में एक खूबसूरत सी दुआ आती है कि जुग जुग जियो, यानी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और लंबी अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के लिए जुग जियो जियो कहना सिर्फ एक शुभकामना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ लंबी हो इतना ही काफी नहीं है, जिंदगी स्वस्थ हो और खुशहाल हो ये भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच को आगे बढ़ाने में ऐसे अभियान लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। आज के युवा तेज रफ्तार जिंदगी जी

पढ़ाई, नौकरी, करियर, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, हर तरफ भागदौड़ है। ऐसे में हम अक्सर अपनी सेहत और आसपास के लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जुग जुग जियो अभियान हमें एक बहुत आसान सी बात याद दिलाता है, अपनी ज़िंदगी की कीमत समझिए और दूसरों की ज़िंदगी की भी। यदि आप युवा हैं तो इस अभियान से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें। अपने परिवार में स्वास्थ्य को लेके बातचीत करें, समय पे जांच करवाने के लिए प्रेरित करें, साफ सफाई पे ध्यान रखें, सही खान पान और नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, और सबसे जरूरी, मानसिक तनाव को छिपाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। किसी को समय पर डॉक्टर के पास जाने की सलाह देना, सड़क पे यातायात नियमों का पालन करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी परेशान दोस्त की बात ध्यान से सुन लेना, ये सभी छोटी कोशिशें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अपनी जिंदगी को हल्के में मत लीजिए, खुद भी स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ लीजिए सुनिए नीतीश तिवारी का लिखा ये गाना। इसे गाया है राज बर्मन ने, संगीत दिया है ऐसो कहीम अहमद ने।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दोस्तों अगले गीत से पहले चलिए करते हैं चर्चा। दोस्तों भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही तैयारी और सावधानी से इसके नुकसानों को कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि तैयारी में ही समझदारी है। अगर अचानक भूकंप के झटके महसूस हों तो सबसे पहले घबराना नहीं है। घर के अंदर हैं तो मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे जाके सिर और गर्दन को सुरक्षित रखें और खिड़कियों, शीशों और भारी सामान से दूर रहें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि भूकंप के दौरान बिजली जाने का खतरा हो सकता है, ऐसे में आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी सावधानियां भी रख सकते हैं। अगर आप घर से बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें, किसी खुले स्थान पर जाइए। अगर आप गाड़ी में हैं तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोककर झटके रुकने तक का इंतजार करें। दोस्तों भूकंप से पहले घर में एक छोटा आपातकालीन बैग तैयार रखें जिसमें पानी, टॉर्च, प्राथमिक उपचार का सामान और जरूरी नंबर हों। परिवार के साथ पहले से तय करें कि भूकंप के समय कहां सुरक्षित रहना है। हम युवाओं की जिम्मेदारी सिर्फ खुद जागरूक रहने ही नहीं बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी सही जानकारी देने की है। अफवाहों पर ध्यान न दें और भरोसेमंद स्रोतों की जानकारी ही सही माने। दोस्तों इसी के साथ लीजिए आपको सुनवाते हैं सोहम नायक का गाया ये गाना। इस गीत को लिखा है ऋत्रिषा सरमह ने, संगीत दिया है कुणाल वर्मा ने।

दोस्तों, आपको हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम कैसा लगा? साथ ही आकाशवाणी के अन्य सभी कार्यक्रमों से संबंधित आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमसे साझा जरूर कीजिए। हमारे कार्यक्रमों से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं, शिकायतें हैं, प्रश्न हैं या प्रशंसाएं हैं, उन्हें आप लिख के हम तक जरूर पहुंचाइए, पत्रों और ईमेल के जरिए। आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं बातों से संबंधित हमारे विचार और रेस्पॉन्स को आप सुन पाएंगे हमारे पहले सोमवार के क्रम पत्र मिला में। आप अपनी बातें हम तक भेज सकते हैं लेटर के जरिए। हमारा पता है क्रम पत्र मिला, युववाणी प्रभाग द्वारा, केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़। हमारा पिन कोड है 496001। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी बातें हमें ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। ईमेल करते समय सब्जेक्ट में पत्र मिला जरूर लिखें, तब जाके आपका संदेश हम तक पहुंच पाएगा। हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम के समापन का। मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त और

यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों

0: को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मन 6:30 पर। 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस। देश गान का वक्त होगा 6:50। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुबह 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम झरोखा। कार्यक्रम में झरोखा का विषय होगा आहार हो शुद्ध और पूरा, ना रहे पोषण अधूरा। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर 7:45 पर। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से होगा सुबह 8:30। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा 9:00। 9:55 पर और 11:55 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:00 और इसका अनुप्रसारण होगा रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगीत 10:30 पर और विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण आप सुनेंगे 11:00 से 11:55 तक और 12:00 से शाम 5:00 तक। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:10 पर आप सुनेंगे झलकी और प्रहसन का कार्यक्रम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी संध्या 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा स्मार्ट खाओ सेहत बचाओ। सुनिएगा क्रम रोजगार सूचना और सुनिएगा चर्चा अंगदान में युवा आगे आए जुग जुग जियो अभियान। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:30 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:00 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:00 रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विविध संगीत और 10:30 पर आप सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
2: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:10 हुए हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
4: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में खनिज ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड शो लगा कर संबोधन, एमा छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स घलो शामिल। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामला सरलग बढ़ा थे, प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग एखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले, मुख्यमंत्री यकीन है कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं है, भलुक अन्वेषण ले लेके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइक्लिंग तक पूरा मिनरल वैल्यू चेन विकसित करे जाही, एखर ले निवेश, उद्योग और रोजगार के मौका बढ़ी। मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड शो ला संबोधित करत रहीन। ओमन कहिन कि लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल और वैनेडियम जैसन खनिज रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी जैसन क्षेत्र पर बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री है बताइन कि नीलामी के एक किस्त में देश के 20 थीन खनिज ब्लॉक्स शामिल है, जिमा छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स घलो हवे। ओमन निवेशक मन ले अपन भागीदारी देके विनती करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री है ई रेत संगवारी पोर्टल और टिन पोर्टल के शुभारंभ करिन। ई रेत संगवारी पोर्टल ले प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मन ला रियायती दर में रेत मिलही और टिन पोर्टल ले दंतेवाड़ा के आदिवासी परिवार मन ला उखर उपज के सही भाव मिलही। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ह, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संग कौशल विकास और वित्तीय मदद पर 2 बड़का समझौता घलो करिन। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के बड़का अधिकारी मन के संगे संग उद्योग जगत के प्रतिनिधि मन घलो शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हकीन है कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र न सिर्फ भारत के सांस्कृतिक विरासत के बड़का हिस्सा हरे, भलुक यहा लाखों लोगन मल्ला रोजगार और आजीविका देवत है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत उमन छात्र मल्ला देश के सांस्कृतिक विरासत और मूल्य ले जुड़े रही के वैश्विक नजरिया अपनाए के विनती करिन। बछर 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा मल्ले योगदान दे के आह्वान करत राष्ट्रपति है कहिन कि छात्र मल्ला नौकरी तलाशे वाला नहीं बनना चाहिए, भलुक रोजगार देवैया बन के प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू H1N1 के मामला सरलग बढ़ा थे, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा के मुताबिक प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है, जिमले 31 दिन सक्रिय मरीज हवे और 99 मरीज मन इलाज के बाद ठीक हो गए है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू ले एको मरीज के मौत नहीं हो है। राजधानी रायपुर में 3 नवा मरीज मिले के संगे संग जिला में संक्रमित मरीज मन के आंकड़ा बाढ़ के 60 हो गए है, 11 सक्रिय मरीज हवे। एखर अलावा दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा और महासमुंद के संगे संग आने जिला मन में घलो सक्रिय मरीज मन हवे। यही बीच स्वास्थ्य विभाग लोगन मन ले खुदे दवा नहीं ले और लक्षण दिखे में जांच कराए के अपील करे है। राज्यपाल रमेन डेका ले आज लोक भवन में छत्तीसगढ़

0: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिन्हा सौजन्य मिलिन। इस दौरान उमर राज्यपाल आयोग के कामकाज के बारे में जानबा दिन। उन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रीता सांडिल्य घलो राज्यपाल ने मिलिन। ए मौका में उमर राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल 2025 ले 31 मार्च 2026 तक के बेरा के 25वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपिन। समान नागरिक संहिता यूसीसी लेके रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में काली 1 सितंबर के मुस्लिम समाज के बैठक हो ही, जिमा बुद्धिजीवी मल ले यूसीसी ले जुड़े सुझाव ले जाही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज बतैन कि मिले सुझाव ला राज्य स्तरीय यूसीसी समिति के सदस्य मन के आगू पेश करे जाही। छत्तीसगढ़ के जम्मो 33 जिला मन के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई में पास उम्मीदवार मन बर सेना भर्ती रैली राखे जाही। ये रैली मध्य प्रदेश के सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होही। सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पद पर उम्मीदवार मन ल 12 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सेना पुलिस पद पर 14 अक्टूबर के रिपोर्ट करना होही। योग्य उम्मीदवार मन ल प्रवेश पत्र ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट और उखर ईमेल में भेजे जा चुके है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बाचे समाचार को थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा में जिला स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुई। ए मौका में उमन शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति के अनावरण करीन। कार्यक्रम के दौरान श्री साव गोंडवाना भवन के जीर्णोद्धार पर 10 लाख रूपया और बेमेतरा में आने आने विकास काम पर 6 करोड़ रूपया दे के घोषणा करीन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पर स्पॉट काउंसिलिंग आज ले शुरू हो गये है। ये काउंसिलिंग 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में बिहान 9 बजे ले संझा 5:30 बजे तक चलही। चुने के अभ्यर्थी मल्ला दस्तावेज परीक्षण महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करे के काम ला पूरा करे बर पड़ी। विश्वविद्यालय एखर ले जुड़े दिशा निर्देश अपन वेबसाइट में जारी कर दे है। रायपुर जिला के अटारी गांव में स्थित नंदनवन ल एक गांव फिर बने ढंग ले बनाया जाही। आज मंत्रालय में हो एक ठिन उच्च स्तरीय बैठक में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मन मुख्य सचिव के आगू नंदनवन पुनर्विकास के प्रस्तावित परियोजना ल पेश करिन। नंदनवन के विकास भर करीबन 50 करोड़ रूपया के निवेश अनुमानित है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में रायगढ़ रोड स्थित कुशल नगर के तीर आज ट्रक ले पिकअप गाड़ी टकरा गये। ये घटना में 2 जिन लोगों के मौकच में प्राण छूट गये और 12 जिन ले ज्यादा यात्री मन घायल हो गये है। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गये है। गाड़ी में 25 ले ज्यादा लोगन मन बैठे रहीन। प्रदेश के लोक संस्कृति पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुर के अनूठा संगम ला मंच देवाय के उद्देश्य ले काली 1 सितंबर ले रायपुर में रंग तरंग कार्यक्रम शुरू करे जाही। संस्कृति विभाग डहार ले होइया ये कार्यक्रम रोजे संझा 7 बजे ले महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइन्स में होही। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र के प्रस्तुति के संगे संग अभी के संगीत मन के प्रस्तुति दे जाही। ये कार्यक्रम 3 सितंबर तक चलही। मौसम विभाग वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के उत्तर छत्तीसगढ़ पर रेड अलर्ट जारी करे है। इस दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग इखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताई कि पश्चिम बंगाल और उखर ले लगे उत्तर ओडिशा में एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं, जेखर असर ले प्रदेश में मानसून के गतिविधि बने हैं। उमन बताइन कि रायपुर के संगे संग मध्य छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जिला पर येलो अलर्ट जारी करे गये है। यही बीच पाछू 3 दिन ले सरलग होवत वर्षा ले प्रदेश के नदियां नरवा में बाढ़ आ गये है। आज घलो राजधानी रायपुर के संगे संग प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के समाचार मिले है। अब थोरकुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ठाकुर ल प्रतिनियुक्ति में विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद में पदस्थ करे गये है। ए बारे में सामान्य प्रशासन विभाग डहार ले आदेश जारी कर दे गये है। और राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर के राखे जाही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज लोक अदालत के तैयारी ल लेके वर्चुअल बैठक लीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर में खनिज ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड सोला करीन संबोधित एमा छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स घलो हवे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामला सरलग बढ़ा थे। प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग इखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा होय के देहे चेतावनी। इकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार का, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम में लीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म आरजू का ये गीत। हसरत जयपुरी ने गीत के बोल लिखे, तर्ज बनाई है शंकर जय किशन ने।
3: चल के तेरी आंखों से

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: लव स्टोरी, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम है फिल्म संगीत दीवाना। आइए, इस फिल्म का गीत हम आपको सुन पा रहे हैं कुमार सानू के स्वर में। समीर के लिखे हुए इस गीत को सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने।

0: संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: रायपुर और सरायपाली केंद्र हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के UPI पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा UPI पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नव रायपुर में छत्तीसगढ़ के 5 सहित देश के 20 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के रोड शो में हुए शामिल, निवेशकों से नीलामी में भागीदारी का किया आह्वान। प्रदेश में अब तक 130 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, 31 मरीजों का चल रहा है इलाज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का हुआ शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्वेषण से लेकर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग तक पूरी मिनरल वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

मंत्री आज नवा रायपुर में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की आठवीं किश्त के रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल और वेनेडियम जैसे खनिज रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीलामी की इस किश्त में देश के 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स भी हैं। उन्होंने निवेशकों से नीलामी में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई रेत संगवारी पोर्टल और टीन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ई रेत संगवारी पोर्टल से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रियायत दर पर रेत उपलब्ध होगी, जबकि टीन पोर्टल से दंतेवाड़ा के आदिवासी परिवारों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ने इंडियन ओवरसीज बैंक और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ कौशल विकास और वित्तीय सहयोग के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते भी किए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू H1N1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 130 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें से 31 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 99 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी रायपुर में 3 नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। 11 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा और महासमुंद सहित अन्य जिलों में भी सक्रिय मरीज मौजूद हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खुद से दवा न लेने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन शो प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावना है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज लोक अदालत की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक ली। बैठक में प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को पुराने लंबित सिविल और आपराधिक समझौता योग्य मामलों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, परक्राम्य लिखित अधिनियम और मोटर दुर्घटना दावा मामलों को प्राथमिकता देने और पक्षकारों के साथ पूर्व बैठक कर समझौते की संभावनाएं तलाशने को कहा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने आज लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। बिलासपुर मंडल स्थित डिविजनल कंट्रोल में स्थापित लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम भारतीय रेल में अपनी तरह की पहली पहल है। इस प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही और सिग्नलिंग की स्थिति का वास्तविक समय में व्यापक और स्पष्ट दृश्य प्राप्त किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में कल 1 सितंबर को मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बुद्धिजीवियों से यूसीसी के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बताया कि प्राप्त सुझावों को राज्य स्तरीय यूसीसी समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेमेतरा में जिला स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद वीरेंद्रनारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान श्री साव ने गोंडवाना भवन के जीर्णोद्वार के लिए 10 लाख रुपए तथा बेमेतरा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई में सफल उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली मध्य प्रदेश के सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पदों के लिए उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सेना पुलिस पद के लिए 14 अक्टूबर को

0: रिपोर्ट करना होगा। योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट और उनके ईमेल पर भेजे जा चुके हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुरों के अनूठे संगम को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कल 1 सितंबर से रायपुर में रंग तरंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे से महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइन्स में होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पारंपरिक लोकवाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों के साथ ही आधुनिक संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। यह कार्यक्रम 3 सितंबर तक चलेगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रायगढ़ रोड स्थित कुशल नगर के पास आज ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में 25 से ज्यादा लोग सवार थे। रायपुर जिले के अटारी गांव में स्थित नंदनवन को पुनर्विकसित किया जाएगा। आज मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के समक्ष नंदनवन पुनर्विकास की प्रस्तावित परियोजना का प्रस्तुतीकरण दिया। नंदनवन के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ रूपये का निवेश अनुमानित है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बलरामपुर और सूरजपुर और उससे लगे हुए जिले में अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तर ओडिशा में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है
1: और अन्य जिले जो है सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक ऑरेंज अलर्ट जो है भारी से अति भारी वर्षा के लिए और रेड अलर्ट जो है अति भारी वर्षा से लेके सीमांत भारी वर्षा के लिए। परसों से ये सिस्टम थोड़ा पश्चिमी का ओर बढ़ने के वजह से ये भारी वर्षा का गतिविधि प्रदेश में कम होने की संभावना है।
0: इस बीच पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ठाकुर को प्रतिनियुक्ति पर विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एक एजेंसी की 10 लाख रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात करते हुए उसे मंडल की कार्यरत एजेंसियों की काली सूची में दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नव रायपुर में छत्तीसगढ़ के 5 सहित देश के 20 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के रोड शो में हुए शामिल। निवेशकों से नीलामी में भागीदारी का किया आह्वान। प्रदेश में अब तक 130 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। 31 मरीजों का चल रहा है इलाज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का हुआ शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
8: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं।
9: पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
10: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में मजरू के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम कारवां।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: रोटी, कपड़ा और मकान, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में। संतोष आनंद ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

हम आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम के स्वर में फिल्म विश्वात्मा का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार बिजू शाह।

साधना सरगम के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लइका सियान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो, बड़ दिन बाद फिर आज एक बार फिर भेटा पर रहन कहा। तो आप मन कैसे हवा संगवारी हो, आप मन अच्छा हुई है। और देखा संगवारी हो, सावन के महीना तो चल दिस कहा, अब भादो लग गिस ना, तो अभी भी बरसात हो थे संगवारी हो। अभी देखा सब कोती उल्टी दस्त बुखार ये सब के वो चला थे। तो ओकरे से थी आप मल्ला कहना चाहबो कि आप मन अपन के सेहत के ध्यान रखिया, जैसे बूता काम करत हवा और पानी में भिजत नहीं करना है, थोड़े से पानी रुके के इंतजार करना है, या फिर जो भी रेंग कोट है छाता है एकर उपयोग करना है और भिजते नहीं करना है, नहीं तो सर्दी जुकाम लग जाही। और संगे संग संगवारी हो, अभी के बरसात के मौसम में आपन के लोग लइका के ऊपर भी हमला विशेष ध्यान देना है, काबर कि अभी उमन के पढ़ाई लिखाई चलत है, उमन के परीक्षा अभी आवत है कहा। और संगे संग हमन जो भी पशुपालन के काम करे हन, हमन जो भी पशुधन रखे हन, उमन के सेहत के ऊपर भी हमला ध्यान रखना है, नहीं तो हमार जो आर्थिक स्थिति है ओहर गड़बड़ा जाही। तो हमार जो भी पशु है उमन के रहे बैठे खाए के जो भी सुविधा है वो अच्छा से करना है। और संगवारी हो देखा, हमन अभी खेती किसानी के काम में रासायनिक कीटनाशक दवाई ये सब के उपयोग करत हन, खाद के उपयोग करत हन, तो ऐसने में का होते हमार फसल के ऊपर भी प्रभाव पड़ते और हमार स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ते। तो ओकरे स्थिति हमला का करना है, स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाना है और खेती के लागत ला घटाना है। एहर हमार आज के बाद के विषय भी हवे। और देखा घर में बनाए वाला कीटनाशक यानी कि जैविक कीटनाशक एमन के प्रयोग ले खेती के खर्चा हर आधा हो जाते और माटी के उपजाऊ क्षमता हर घलो बने रहते। तो संगवारी हो, आवा जानबो कि हमन कैसे स्वनिर्मित कीटनाशक बनाबो अला हमन उपयोग करबो। तो सबले पहली तो नीम के पत्ती और ओकर जो फर है नीम के ओकर हमला मिला के कीट नियंत्रण पर एकर घोल बनाना है। सबले पहली सामान लेना है, 5 किलो नीम के पत्ती या फिर फर एला पीस के 10 लीटर पानी और 100 ग्राम सरसों के जो खली रहते ओला लेना है। और एकर बनाए के तरीका ये हवे, नीम के पत्ती या फिर निम्बोली ला 10 लीटर पानी में 2-3 दिन बर हमला का करना है रख देना है, यानी कि सड़ाना है। नीम के पत्ती या फिर ओकर फर ला पीस करके 10 लीटर पानी में 2-3 दिन बर सड़ाना है। ओकर बाद लाठी ले बढ़िया चला के ओला कपड़ा में छान लेना है, यानी रोज दिन ओला लाठी में

0: कीड़ा मकोड़ा बर एहर असरदार होथे। एकर बर सामान चाहिए नीम, धतूरा, मदार, बेसरम, करंज, अमरूद, पपीता, सीताफल और तुलसी के पत्ता। ये सब्बो ला एक एक किलो हमला लेना है। अभी जो सब्बो प्रकार के चीज के नाम बोले वो सब्बो ला एक एक किलो लेना है और 10 लीटर गोमूत्र लेना है और 2 किलो गाय के गोबर लेना है। एकर बनाए के तरीका ये हवे, सबो पत्ती ला बढ़िया से कुचल के, यानी कि सबो पत्ती ला मतलब कुचल देना है, मसल देना है। ओकर बाद गोमूत्र और गोबर में मिला देना है। 15 से 20 दिन तक छाँव में एला ढक के रखना है और रोज 2 बार लाठी ले एला चलाना है। यानी 15 ले 20 दिन तक एला पानी में मतलब छोड़ देना है और ओला ढक के रखना है, गोमूत्र और गोबर में छोड़ देना है, ढक के रखना है और 2 दिन हर बार लाठी ले ओला चलाना है। और एकर उपयोग कैसे करबो तो 200 ग्राम अरकला 15 लीटर के स्प्रे पंप में मिला के फसल में एला छिड़काव करना है। और मट्ठा, छाछ या फिर तांबा के घोल, एहर फफूंद रोग बर असरदार होते। एकर बर सामान चाहिए 5 लीटर पुराना खट्टा मट्ठा और तांबा के बर्तन या फिर तांबा के टुकड़ा। यदि तांबा के बर्तन ही होही तो तांबा के टुकड़ा भी चल जाही। और एकर बनाए के तरीका ये हवे कि खट्टा मट्ठा ला तांबा के टुकड़ा ला 10 ले 12 दिन बर डूबा के रख देवा। जब मट्ठा के रंग हरा नीला हो जाही तांबा ला निकाल लेवा। एका उपयोग कैसे करना है, 1 लीटर मट्ठा घोल ला 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे ले सबो फफूंद रोग ठीक हो जाते। जो फफूंद जनित रोग रहते वो सबो हर ठीक हो जाते। और ये जो स्वनिर्मित कीटनाशक के फायदा के बात करबो तो एमे कम खर्चा आते, बाजार के जो महंगा रासायनिक दवाई के खर्चा हर बाज जाते। और संगे संग हमार जोन माटी के मित्र कीट हवे ओमन के सुरक्षा भी होते। केचुआ है, सोन चिड़ैया है और मित्र कीड़ा मन ला नुकसान नहीं पहुँचे। जब हमन स्वनिर्मित कीटनाशक यानी जैविक कीटनाशक के उपयोग करबो तो मित्र कीड़ा मन नहीं मरे और माटी के सेहत भी बने रहते। संगवारी हो, माटी के गुणवत्ता और फसल के स्वाद ह बने रहते। जब आप मन अनुभव करे हवा कि जो रासायनिक दवाई वाला खेती करे वाला फसल और जैविक दवाई वाला खेती करे वाला फसल दोनों के जो स्वाद में ओकर गुणवत्ता में अंतर रहते, ओकर स्वाद में भी अंतर देखे बर मिलते। तो एकरे सेती जो स्वनिर्मित कीटनाशक है यानी कि जैविक कीटनाशक है यह बहुत ही फायदेमंद होते। संगवारी हो, यह हमार सिर्फ फसल बर ही नहीं बल्कि माटी, पर्यावरण और मनुष्य मनखे तक के स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा रहते। तो एकरे सेती हमला स्वनिर्मित कीटनाशक अपनाना है और खेती के लागत ला भी घटाना है। अब संगवारी हो, बेरा हो गिसना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो आप मन कापी पेन निकालो और आज के प्रश्न ला लिखाओ। दूध बर बढ़िया नस्ल के गाय के 2 ठन नाम बताहा। एक बार और सुन लेवा संगवारी हो प्रश्न ला, दूध बर बढ़िया नस्ल के गाय के 2 ठन नाम बताहा। जो अच्छा दूध दे वाला नस्ल के गाय है एकर 2 ठन नाम बताना है आप मन ला। तो हम ला आप मन के उत्तर के अगुरा रही, आप मन जरूर एकर उत्तर लिख के भेजिया। अब संगवारी हो, हमार भेंटवार्ता के क्रम रहते कहा तो ग्राम लेंद्रा विकास खंड बरम केला के महिला कृषक लक्ष्मी यादव से महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़े ये विषय में हो रही इस मोर भेंटवार्ता। तो आवा एला सुन लेबो।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। और देखा संगी हो, हमार भेंटवार्ता के विशेष क्रम रहते तो यही भेंटवार्ता के क्रम में मैं एक महिला किसानिन बहनी ले भेंट करा था।
2: जोन मन स्व सहायता समूह में सक्रिय महिला के रूप में काम करत है तो बहनी आप मन ला सबले पहली मोर को तिले राम राम, जय जोहार।
3: राम राम, जय जोहार।
2: हाँ, आप मन के परिचय बता।
3: मैं लक्ष्मी यादव।
2: हाँ हाँ।
3: सक्रिय महिला के रूप में काम करो था लेंद्रा में, लेंद्रा और बेंद्रा पारा में।
2: हाँ हाँ। स्व सहायता समूह में
3: हमर जो होते हाँ। में सक्रिय महिला के पद में मैं काम करत हूँ।

0: अच्छा, सबले पहले ये बता कि जो आप मन के समूह है ओकर नाम का है?
1: हमर समूह के नाम किरण स्व सहायता समूह है।
0: हाँ हाँ,
1: और
0: ए समूह में आप मन कब ले जुड़े हवा?
1: ये समूह में हमारे जुड़े 2019 से हम जुड़े हैं।
0: अच्छा, 2019 से जुड़े हैं।
1: हाँ।
0: मतलब ये समूह 2019 में बनी से?
1: हाँ, 2019 में।
0: हाँ,
1: किरण स्व सहायता समूह बनी से।
0: हाँ, जब ले बनी से तब ले जुड़े हैं।
1: हाँ
0: हाँ, तो ए में अभी आप मन का काम करता?
1: ए में हमार समूह बना था।
0: हाँ।
1: मतलब घर घर जाके महिला मल्ला 10 जने 15 जने
0: हाँ।
1: जोड़थन।
0: हाँ।
1: तो में ज्यादातर महिला मन 10 जन ज्यादा है।
0: हाँ।
1: और हमारे लेंद्रा गांव में
0: हाँ।
1: मिनिमम लेंद्रा और बेंद्रा पारा एक ही पंचायत होते हैं। तो
0: हाँ।
1: में के कुल मिला के 36 समूह है।
0: अच्छा, एक पंचायत में?
1: हाँ, 36 समूह है।
0: अच्छा, किस सारा समूह? तो इस समूह मतलब का बर बनाए हैं?
1: समूह हमर महिला मन ला जागरूक करे बर।
0: हाँ।
1: अपन घर परिवार के जो आजीविका के जो बचत करे बर।
0: हाँ।
1: और अपने परिवार मन ला आगे बढ़ाए बर।
0: हाँ।
1: ओकरे बर सरकार के द्वारा इमन समूह बनाए गई से।
0: अच्छा,
1: हर हर अलग अलग के 10 जन के ग्रुप में बटे है। तीमन के अलग अलग नाम है।
0: हाँ।
1: कई प्रकार के नाम, अलग अलग नाम तर के स्व सहायता समूह बनाए गए है।
0: हाँ हाँ, तो आप मन बता थे कि आप मन स्व सहायता समूह में सक्रिय महिला के रूप में काम करा था, तो
1: हाँ।
0: आप मन के का काम होवे?
1: हमार सक्रिय महिला के काम रहते कि हमन समूह बना पहले।
0: हाँ।
1: ओकर बाद समूह ला आगे बढ़ावो, महिला मन ला बचत करवा था।
0: अच्छा।
1: बचत मन ला जिसे 1 महीना में 100 रुपए जमा कर रहना रहते हर महिला मन ला।
0: मतलब आप मन के समूह में?
1: हाँ, 1000 रुपया होते हर महीना।
0: हाँ।
1: अब तो हम 4 महीना 5 महीना होते तो हमन बैंक लीकेज करवा था उमन ला।
0: अच्छा।
1: बैंक लीकेज यानि कि उमन ला आजीविका चलाब। सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा उमन ला 1 लाख रुपया 1.5 लाख मिलते।
0: अच्छा, मतलब 1000 जमा करे के बाद?
1: हाँ, उमन बैंक लीकेज करो था, मतलब फार्म भर था ना, मन लोन था।
0: हाँ।
1: तो उमन ला का करते बैंक के तरफ से, ग्रामीण बैंक हो, स्टेट बैंक हो, उमन के में काम थे उमन ला 1.5 लाख, उन्हों ला 2 लाख, उन्हों ला 6 लाख, जिसे कि हमें किरण स्व सहायता समूह ला भी आजीविका करे बर 6 लाख रुपए दी से।
0: अच्छा, 6 लाख मिली से का?
1: हाँ
0: हाँ। आप मन के जो आजीविका है उमे का काम किया जाए?
1: हमार जिसे आजीविका में हमन करत हो ना भी, कोई चप्पल जूता दुकान खोले है, कोई कपड़ा दुकान खोले है, कोई गल्ला किराना दुकान खोले है।
0: अच्छा।
1: तो उमन ला जो आजीविका ला उमन के और जो है बोल और आगे बढ़ाए बर।
0: हाँ।
1: प्रॉफिट करवाए बर बोला ये बैंक के तरफ से, बैंक लीकेज होते बोला 6 लाख रुपया दिया गिसे।
0: अच्छा अच्छा, तो ये जो ऋण मिली से कहा था है ना?
1: हाँ।
0: तो ये ऋण के का उपयोग करा था वा?
1: ऋण के वही तो कहा था 6 लाख रुपए जो मिली से।
0: हाँ हाँ, अलग अलग बुता
1: हाँ,
0: मतलब काम करा था
1: उन्हें जूता चप्पल दुकान जैसे हमारे किरण स्व सहायता समूह में। हाँ, कोई BMC चला थे।
0: हाँ हाँ,
1: कोई जूता चप्पल दुकान चला थे।
0: अच्छा।
1: कोई कपड़ा दुकान चला थे।
0: हाँ।
1: ऐसे करके हमार
0: अच्छा
1: मिली से।
0: तो ये ऋण कब चुकाना पड़ते?
1: प्रति माह हमन।
0: अच्छा।
1: एक आदमी अपन अपन केस मतलब वही हिसाब से पहले मीटिंग बैठ जाता।
0: हाँ।
1: कि कतक कतक महीना में कलेक्शन करबो, कतक पटाबो कके।
0: हाँ।
1: महीना के महीना 20,000-30,000 रुपया हम
0: हाँ
1: जमा करथन बैंक।
0: अच्छा, महीना महीना?
1: महीना महीना,
0: किस्त जैसे?
1: किस्त।
0: हाँ। तो आप मतलब ये जो महिला स्व सहायता में समूह में जुड़े हैं, तो इमें ले लाभ मिला थे?
1: हाँ, बहुत लाभ मिला थे इमें हमला। जैसे कि हमला RF राशि मिले है।
0: हाँ।
1: और CIF राशि मिलते, तो वो में भी हमन आजीविका चला था।
0: अच्छा।
1: जैसे RF राशि 15,000 रुपया सरकार के तरफ से फ्री देते।
0: अच्छा,
1: उमे
0: अच्छा।
1: हमें किसी प्रकार के महिला माला पैसा 1 रुपया भी पटाना नहीं रहे।
0: अच्छा।
1: वो मल्ला फ्री अपन आजीविका गतिला, जिसे कोई क्या बोलते हैं,
0: बढ़ाना है।
1: हाँ, जैसे कि मिर्चा मसाला पीसना है, पत्ता दोना के काम करना है, बाती बनाना है, ये सब 15,000 रुपया फ्री सरकार के तरफ से दिया जाते है। वो लागत है RF राशि।
0: अच्छा।
1: CIF राशि तिला कहते हैं जिनमें ग्राम संगठन के द्वारा 60,000 रुपया दिया जाते है।
0: अच्छा।
1: 60,000 रुपया 1 रुपये के ब्याज दर से।
0: हाँ।
1: दिया जाते है महिला मल्ला।
0: हाँ।
1: ताकि वो अपन जीविका आगे बढ़ा सके।
0: अच्छा अच्छा, आप मन बहुत ही अच्छा काम करा था वा, और बढ़िया।

0: तरक्की भी करत हवा है ना, और आप मन ला लाभ भी मिलत है। तो आप मन ये बता कि आप मन के समूह में जुड़े है, तो जो स्वच्छता अभियान 4.0 है ना, इमे का करे हवा और का करत हवा?
1: अभी स्वच्छता अभियान में हमन गांव गांव में गए हन, हमारे सकरे महिला पशु सखी कृषि सखी मन हन।
0: अच्छा,
1: हमारे डिपार्टमेंट जो बिहान समूह है, बिहान टीम है, वो में हम सकरे महिला कृषि सखी पशु सखी हन। तो वो मन गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला गंपारा तालाब मंदिर जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ में जा जाके हम साफ सफाई करवा हन, और जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पेड़ पौधा भी उगवा हन।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह के हम, और जैसे कि कचरा सूखा कचरा और गीला जो कचरा होते तीरा अलग अलग करे के ऊपर का किसे किसे वो होते डस्टबिन में लभ्यू मल्ला देवा हन।
0: अच्छा, सूखा कचरा और गीला कचरा के महत्व ला समझाए हन, कहा अलग अलग करे वह भी सिखाए हवा।
1: और स्वच्छता के शपथ ला लेके हमार जो माँ हमार दीदी बहनी मन है वो मन ला जागरूक भी कर हन की स्वच्छता तुमन अपन अपन घर परिवार ला बनाए रख, हर हफ्ता में कम से कम अपन परिवार ला एम अपन घर ला एक बार एक दिन शनिवार या रविवार के साफ जरूर रखना चाहिए करके बता।
0: हाँ, बहुत ही अच्छा जानकारी बता था आप मन, और बहुत ही बढ़िया काम करा था। एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है, और इतनी अच्छा जानकारी देवा एक से भी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहर।
1: राम राम, राम राम।
2: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
3: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: हाँ, तो संगी हो अभी हमने सुने संदेश कहा, और संदेश के पहली सुनत रहन भेंटवार्ता। अब संगी हो आज के नसीहत के विषय हवे नकली खाद के पहचान की सामान्य विधि। तो देखा संगवारी हो, हमन बाजार में खाद खरीदे बर जाथन तो हमन नहीं पहचान पान कि वह असली हवे कि नकली, ऐसे ही ले आनथन ओकर उपयोग करथन। तो हमला का करना है, खाद खरीद के लाना है, तो ओकर बाद ओकर पहचान करना है, और पहचान करे के कुछ सामान्य विधि भी हवे, एला आप मनला जानना जरूरी हवे। तो एकर बारे में आज हमन आप मनला बताबो। जैसे यूरिया है, हमन यूरिया खरीद के लाना थन, तो एकर जो पहचान है यह नकली हवे कि असली, तो एकर बार कुछ विधि हवे। सबले पहली तो पानी में घोलना है, यूरिया ला पानी में घोले ले एकदम पानी हर ठंडा हो जाते और यूरिया हर पूरा घुल जाते। अगर कछु अवशेष बच जाते या फिर पानी ठंडा नहीं हो तो मिलावट हो सकत है। यानी कि पानी में घोल के ये देखना है कि यूरिया हा पूरा घुला थे कि नहीं, और पूरा घुल जाते ओकर बाद पानी है ठंडा हो थे कि नहीं, ये ला देखना है। यदि यूरिया पूरा घुल जाही और ठंडा हो जाही पानी है, तो जो खाद है वह असली हवे। ओकर बाद हमला तवा में गरम करके देखना है, धीमा आंच में तवा के ऊपर यूरिया डालबो तो ओहर पिघल जाते। आँच तेज करे ले ओकर ले तीखा गन यानी अमोनिया निकलते, और आखिरी में कुछ नहीं बचे। तो ये हर हवे यूरिया के पहचान के विधि। तो आप मन भी ऐसे पहचान करके देख सका था जब यूरिया खरीद के लान था, तो ये सब बोला आप मन जो विधि है एला उपयोग कर सका था और जान सका था कि आप मन के खाद है नकली हवे कि असली हवे। ऐसने ही DAP हवे संगवारी हो, एकर पहचान कैसे करना है, नाखून ले रगड़ के DAP के जो दाना है ओमन ला अंगूठा और हाथ ले रगड़बो तो वह आसानी ले नहीं टूटे। यानी कि अंगूठा के मदद से हाथ में रगड़बो तो वह आसानी ले नहीं टूटे। और तंबाकू और चूना विधि भी हवे, DAP के थोकन दाना ला चूना के पानी के संग हाथ में लेके रगड़बो तो तीखा अमोनिया के गंध आते जेला सूंघे ले छींक आ जाते। ऐसने ही गरम करके भी देखना है, तवा में गरम करे लिए DAP के दाना मन फूल जाते। तो DAP के पहचान के ये तीन ठा विधि हवे सामान्य विधि, एला आप मन उपयोग करके जान सकत हो कि आप मन के खाद के नकली हवे कि असली हवे। ऐसने ही संगवारी हो, सिंगल सुपर फास्फेट हवे, एकर पहचान हमला कैसे करना है। तो जो सिंगल सुपर फास्फेट के दाना मन सख्त

भूरा या फिर हल्का काला रंग के और असमान आकार के होते। और गरम करके भी देखना है, तावा में गरम करेले ये जो सिंगल सुपर फास्फेट के दाना मन डीएपी के जैसे फूलत नहीं है। और ऐसने हमला पोटास, पोटास के भी पहचान करना है रंग और पहचान। असली पोटास हर लाल मिर्च पाउडर और नमक के मिश्रण जैसे सफ़ेद और लाल रंग के कण दिखते। असली पोटास वह होते जो लाल मिर्च पाउडर और नमक के मिश्रण जैसे सफ़ेद और लाल रंग के कण दिखते। और पानी में टेस्ट कैसे करना है, पानी में डाले ले असली पोटास के रंग जो रंग है वह लाल रंग हो जाते पानी में, यह नहीं घुले बल्कि लाल कण पानी के ऊपर तैरे लगते कहा, यानी पानी में यह नहीं घुले पानी के ऊपर में यह तैरे व लगते। और देखा संगवारी हो, खाद हमेशा हमला अधिकृत दुकान ले ही बिल यानी कि रसीद ले के ही खरीदना है। अगर ज़्यादा आशंका हो थे तो हमला नज़दीकी कृषि विभाग या फिर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में संपर्क करना है। तो ऐसे ही संगवारी हो, नकली खाद के पहचान के ये सब वो सामान्य विधि हवे, एला आप मन कर सकत हो और अपन के खाद के पहचान कर सकत हो। और संगवारी हो, आवा एक ठन झमाझम लोकगीत सुन लेबो, ओकर बाद फिर हमार चर्चा कोती आगू बढ़बो।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनेन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, और अभी ये भोजली गीत सुनेन कहा जेला गाय रिन है शांति यादव और इंद्र चंद्राकर। और संगवारी हो, आज हवे दिन सोमवार, और आज के हमार विशेष क्रम रही थे चिट्ठी मिलिस के क्रम। तो एदारी के चिट्ठी मिलिस के क्रम ला लेके आए हवा मैं आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल। आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत है चिट्ठी मिलिस के क्रम मा। तो संगवारी हो, हमर कोती पहला ईमेल आए हवे बिलाईगढ़ ले रोशन देवांगन, रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, नरेंद्र कुमार तिवारी, एमन के ईमेल आए हवे। एमन लिखत हैं, आकाशवाणी रायगढ़ के जम्मो श्रोता मन और पूरा स्टाफ ला जय जोहार। तो संगवारी हो, आपो मन ला भी राम राम जय जोहार। अवैया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन परब के जम्मो श्रोता मन, उद्घोषक मन, प्रस्तुतकर्ता मन और आकाशवाणी रायगढ़ के पूरा स्टाफ ला हृदय ले गाढ़ा गाढ़ा बधाई और हार्दिक शुभकामना। तो संगवारी हो, आप मन के बधाई और शुभकामना हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे कहा, और आपो मन ला भी बहुत बहुत शुभकामना है। एमन आगे लिखत हैं, कान्हा जी के बांसुरी के मधुर सुर जैसने आकाशवाणी के आवाज घलो हमर मन ला हमेशा मोहित करत रहे। हमन तो रेडियो ले इतना दिल लगा बैठे हवन की खाना नहीं मिली त चल जही, फिर रेडियो सुने बिना हमन ले नहीं रहे। तो बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, जेकर आदत हो जाते वह जल्दी से नहीं छूटे। रेडियो हमर बर सिर्फ एगो माध्यम नहीं, बल्कि हमार सुख दुख के संगी, हमार अपन मन के आवाज और रोज के जिंदगी के हिस्सा बन गए हवे। एमन आगे लिखत हैं, शुक्रवार संझा के शानदार भेंटवार्ता, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 बच्चर पूरा होय के अवसर मा छत्तीसगढ़ बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के सहायक प्रबंधक सुमित मेहता जी ले रामविलास पटेल जी के शानदार भेंटवार्ता सुने बर मिलिस कहत हैं। और जनधन योजना ले जुड़े जो जरूरी जानकारी है एला बहुत सरल और बढ़िया ढंग ले श्रोता मन तक पहुँचाएगीस। ए ज्ञानवर्धक बातचीत बर सुमित मेहता जी और रामविलास पटेल जी ला हृदय ले धन्यवाद देते हैं। तो आपो मन ला भी धन्यवाद संगवारी हो कि आप मन हमार जानकारी ला अच्छा से सुना था वा एकर लाभ उठावा था वा। और हमार तो कामे चे संगवारी हो कि आप मन ला हमन ज्ञानवर्धक जानकारी देवन। और एमन आगे लिखत हैं, हमार लोकगीत रक्षाबंधन के पावन दिन अनुसुईया साहू जी के शानदार प्रस्तुति मन ला बहुत भागे कहत हैं। श्रोता मन के भेजे चिट्ठी और ईमेल ला कार्यक्रम में शामिल करना और रक्षाबंधन के रंग में रंगे एक ले बढ़ के एक सुरीला छत्तीसगढ़ी गीत सुनाना सचमुच बहुत सुंदर लगीस कहत हैं। अनुसुईया साहू जी, इतका सुंदर प्रस्तुति बर आप ला गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद और साधुवाद। तो संगवारी हो, हमार अनुसुईया साहू जी दीदी तक आप मन के धन्यवाद और साधुवाद पहुँचा थे कह कार्यक्रम के माध्यम से। और एमन आगे लिखत हैं, हेलो संगवारी रेणुका प्रधान जी, रेणुका प्रधान जी के मीठ आवाज और अपनपन भरे अंदाज में हेलो संगवारी सुन के ऐसा लगते जैसे कोनो अपन संगवारी ले गोठियावत हवन। आपके प्रस्तुति मल्ला हमेशा खुशी देते, बहुत सुंदर कहते हैं। और आगे लिखते हैं, हेलो संगी रामविलास पटेल जी, रामविलास पटेल जी के सुघर आवाज, सरल बातचीत और श्रोता मल्ले जुड़ाव हेलो संगी कार्यक्रम के खास पहचान आए कहते हैं। गीत संगीत और बातचीत के बढ़िया मेल श्रोता मल्ला खूब भाईस, गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद कहते हैं। और आगे लिखत हैं, लोक रंजनी कृष्ण कुमार साव जी, छत्तीसगढ़ के माटी के सुगंध, लोक संस्कृति के मिठास और सुघर लोकगीत ले सजे लोक रंजनी कार्यक्रम सुन के मन हर खुशी ले झूम उठिस कहते हैं। कृष्ण कुमार साव जी, एक का सुंदर प्रस्तुति और एक ले बढ़ के

एक छत्तीसगढ़ी गीत सुनाए बर आप ला हृदय ले धन्यवाद कहत हैं। तो संगवारी हो, आप मन के धन्यवाद हमर भैया तक पहुँचत है कहा, और हमर भैया अभी हमर बीच में ही हैं। और आगे लिखत हैं, आकाशवाणी रायगढ़ के खासियत यही आए कि यहाँ कार्यक्रम सिर्फ रेडियो में नहीं बसते बल्कि श्रोता मन के हृदय में उतर जाते। कभू लोकगीत में हमर माटी के खुशबू मिलते, तो कभू बातचीत में अपनपन, और कभू जानकारी ले ज्ञान मिलते, और कभू गीत मल्ला भाव विभोर कर देते। आकाशवाणी रायगढ़ के जम्मो प्रस्तोता, उद्घोषक, अधिकारी, कर्मचारी और पूरा स्टाफ ला गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद और साधुवाद। आप मन के आवाज एसएनएच रेडियो के तरंग में गूंजत रहे, और हमन श्रोता मन के रेडियो संग ये अपनापन के रिश्ता हमेशा बने रहे। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जम्मो झनला हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामना कहत हैं। तो आपो मल्ला भी बहुत बहुत शुभकामना है, और इतकी अच्छा ईमेल लिखे बर, समीक्षा लिखे बर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन सब्बो दिन के कार्यक्रम ला पूरा सजा के लिखे हवा, और हर दिन के कार्यक्रम ला आप मन ध्यान से सुनत हवा, और कौन हमर दीदी भैया मन प्रस्तुति देते हैं एला भी आप मन लिखे हवा। एक बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसने ही आप मन हमार कार्यक्रम ला माया दुलार बना के सुनत रहा, और ऐसने ही ईमेल लिखत रहा। और अगला ईमेल आए हवे संगवारी हो, करी भदर ले पुरुषोत्तम निर्मल, शारदा निर्मल और गीतिका गुड़िया एमन कहत हैं, हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर नजर डालबो तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति हवे। यहाँ के मधुर बोली में सरल सहजता और स्पष्टता तो है ही, बोली के मिठास में सदा से ही हमेशा ही जनमानस ला जोड़ के रखी से। ये कृषि प्रधान भूभाग होए के कारण खेती किसानी के काम में कभू एकल एक जन तो कभू समूह में कार्य करना पड़ते। ऐसे समय में नाना प्रकार के गीत गाय के परंपरा रही से ददरिया के गूंज में सामूहिक चेतना धारा के संगीत के स्वर भी सुनाई देते। एमन आगे लिखते हैं, 26 अगस्त के कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर आ रही हैं कृष्ण कुमार साव जी। आप मन सबो श्रोता के ईमेल और पत्र ला निस्वार्थ भाव से संपादित करा जो सराहनीय रहिस। कार्यक्रम लोकरंजनी के उम्दा प्रस्तुति पर आप ला दिल से बधाई कहत हैं। तो संगवारी हो, आप मन के बधाई पहुँचा थे कहा। और 27 अगस्त के कार्यक्रम हेलो संगवारी लेकर आ रही हैं रेणुका प्रधान जी। आप मन विभिन्न क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र ले श्रोता साथी मन ले सीधा संवाद कर, बातचीत कर, और ओ मन से जुड़े जो कार्य के जानकारी हासिल कर। आप मन के मनमोहक प्रस्तुति पर आप मल्ला धन्यवाद है कहत हैं। और 28 अगस्त के कार्यक्रम हमार लोकगीत लेके आ रही हैं अनुसुईया साहू जी। आप मन मधुर आवाज में श्रोता मन के भेजे ईमेल और पत्र ला बराबर स्थान देते हुए कार्यक्रम लोक रंजनी के सफल लोकगीत के सफल संचालन कर, और कार्यक्रम में चार चांद लगा देवा। बेहतरीन प्रस्तुति पर आप ला दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आपो मल्ला भी दिल से धन्यवाद संगवारी हो। आप मन के बधाई शुभकामना हमर संगवारी मन तक पहुँचा थे दीदी भैया मन तक, और आप मन ऐसने बहुत ही अच्छा समीक्षा लिखे हवा, और ऐसने ही हमार कार्यक्रम ला सुनत रहा, और ऐसने ईमेल भेजत रहा। अगला ईमेल आए हवे संगवारी हो, माँ महामाया चौक मेघा पराले रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल एमन लिखत हैं, 24 अगस्त दिन सोमवार के कार्यक्रम पत्र मिला प्रस्तुति दे रही हैं सुमित्रा पटेल जी। एमन बधाई और शुभकामना देते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन हमार कार्यक्रम ला अच्छा से सुना था। एमन आगे लिखत हैं कि 25 अगस्त दिन मंगलवार के हेलो संगी प्रस्तुति श्री राम विलास पटेल सर जी, जाने माने उद्घोषक महोदय, आकाशवाणी रायगढ़ के जान, बधाई और साधुवाद, राम राम कहते हैं। तो आप मन के बधाई सब, साधुवाद सब पहुँचा थे संगवारी हो हमार कार्यक्रम के माध्यम से कहा। वो मन भी सुन के गदगद हो तो ही खुशी में। और अगला एमन लिखत हैं 26 अगस्त दिन बुधवार लोक रंजनी कार्यक्रम प्रस्तुति दे रही हैं श्री कृष्ण कुमार साव जी, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दे रही हैं, एकर बार एमन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 27 अगस्त दिन गुरुवार के हेलो संगवारी प्रस्तुति दे रही हैं दीदी रेणुका प्रधान जी, बहुत सुंदर लागिस प्रस्तुति पर, बहुत बहुत आभार कहते हैं। 28 अगस्त दिन शुक्रवार के आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुति दे रही हैं सुशील सिंह जी, सुपर प्रस्तुति पर बधाई कहते हैं। 28 अगस्त दिन शुक्रवार कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के प्रस्तुति दे रही हैं श्री चवल पटेल जी, लाजवाब प्रस्तुति पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं। 28 अगस्त दिन शुक्रवार कार्यक्रम हमार लोकगीत प्रस्तुति दे रही हैं दीदी अनु जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगी, सफल प्रस्तुति पर अनु जी ला हृदय ले धन्यवाद देते हैं। 29 अगस्त दिन शनिवार के सुने पर मिली भक्ति गीत और कृषि मंच प्रस्तुति दे रही हैं रामविलास पटेल जी, पैराकुटी के जानकारी बहुत ही लाभदायक रही से पटेल जी, बहुत बहुत आभार धन्यवाद कोटि कोटि बधाई कहते हैं। बाजे मांदर सुपर लगी सबो कार्यक्रम एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रही हैं, आकाशवाणी रायगढ़ ला कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं। और एमन कहते हैं कि हैदराबाद ले हमन लाइव कार्यक्रम सुनथन, सबो कार्यक्रम ला नियमित रूप से सुनथन, वाह तो आप मन लाइव सुनता एकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगे संग एकर बार भी और धन्यवाद है कि आप मन नियमित रूप से सुनता, तो ऐसने ही सुनत रही संगवारी हो हमारे कार्यक्रम माला और चिट्ठी पत्री ईमेल भेजत रही। और अगला ईमेल आए हवे संगवारी हो मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, शिवम साहू, एमन कहते हैं आकाशवाणी रायगढ़ केंद्र के मैं नियमित श्रोता हवा, हमला ये केंद्र के कार्यक्रम में चौपाल कार्यक्रम हमार लोकगीत एला अच्छा लागते कहते हैं, लोक रंजनी माटी के गीत, हेलो संगवारी, हेलो संगी लीजिए फिर सुनिए, ये कार्यक्रम ले हमार भरपूर मनोरंजन तो होते और एखर ले ही सीख और ज्ञान और प्रेरणा तको मिलते कहते हैं। और सफल प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार के पूरा टीम ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहते हैं। तो संगवारी हो आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन हमार सबो कार्यक्रम ला नियमित रूप से सुना था वा, और आप मन ला हमार कार्यक्रम के माध्यम से सीख मिलत है, प्रेरणा मिलत है, ज्ञान मिलत है, तो ऐसने ही हमार कार्यक्रम मन ला सुनत रही। और इतकी अच्छा ईमेल समीक्षा लिखे पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ईमेल आए हवे संगवारी हो धमनी राजिम जिला गरियाबंद ले समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल धीवर, युवांश धीवर, एमन कहते हैं हेलो संगी कार्यक्रम सुन के हमार मन खुशी ले झूम गे, श्रोता भाई मन के गोड बात सुन के अच्छा लागिस, साथ ही गीत मन के बात तो अलग है जेला सुन के मन ह गदगद हो जाते। सही बात है संगवारी हो, गीत के बात तो अलग ही हवे, गीत सुन के मन ह गदगद हो ही जाते, और संगे संग आप मन हमार कार्यक्रम ला सुनता तो हमार मन ह भी गदगद हो जाते। और आगे लिखत है संचालन प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुति सहयोग के जम्मो संगी मल्ला और रामविलास जिला बहुत बहुत बधाई और गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। तो संगवारी हो आप मल्ला भी बहुत बहुत बधाई और गाड़ा गाड़ा धन्यवाद कि आप मन हमार सबो कार्यक्रम ला पूरा मन से और पूरा समय निकाल के सुनता, और संगे संग सुने के संगे संग इतकी अच्छा समीक्षा भी लिख के भेजता, तो एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप मन के जितना भी बधाई है, शुभकामना है, ये सब हर हमार संगी संगवारी मन तक कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे कहा, वो मन भी सुन के गदगद होते हैं, तो ऐसने ही संगवारी हो आप मन भी
इसने ही चिट्ठी पत्री ईमेल लिख के भेजत रही और हम मन गदगद होत रहो।

तो संगवारी हो, चिट्ठी पत्री के क्रम यानी चिट्ठी मिलिस के क्रम यही सिरावत है कहा। अब बेरा होगिस ना भेंटवार्ता सुने के। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर विशेष भेंटवार्ता, नेत्रदान महादान, अंधकार से प्रकाश की ओर विषय पर खितेश्वर गुप्ता नेत्र सहायक अधिकारी से रामविलास पटेल की भेंटवार्ता। तो आवा संगवारी हो एमन के भेंटवार्ता ला सुनबो।

0: संगवारी हो, राम राम, जय जुहार। भेंटवार्ता के विशेष अंश मा संगवारी हो, ये दारी आप मन बर लेके आए हन विशेष भेंटवार्ता। काबर संगी हो, अभी चला थे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, और ये पखवाड़ा ला मनाए जाते हर एक बच्चर 25 अगस्त ले 8 सितंबर तक। संगी हो, देखा नेत्रदान करके हमन दूसर के जीवन में उजियारा ला सकत हन, और नेत्रदान ले जुड़े भ्रांति और लोगन मन में जो मिथ्या हावे ये सब ला ध्यान में राख करके संगी हो जागरूकता के उद्देश्य से नेत्रदान ला बढ़ावा देहे बर राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाते। इही क्रम में आज हमार स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हावे खीतेश्वर गुप्ता जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिड़मिड़ा में ये मन हावे नेत्र सहायक अधिकारी। सर, सबले पहली तो आप मल्ला हमार स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार, जय जोहार।
1: जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला, राम राम, जय जोहार।
0: तो सर, आप मन से हमन जानना चाहबो कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा काबर मनाया जाते, काबर जरूरत पड़त है मनाए के।
1: हमार भारत देश में 25 अगस्त ले 8 सितंबर के बीच हर बछर राष्ट्रीय नेत्रदान कार्यक्रम मनाया जाते। ये कार्यक्रम ला हमर समाज के सबो वर्ग, सबो जाति धर्म मानने वाले मनखे मन ला जागरूक करे के उद्देश्य ले प्रतीक चिन्ह के रूप में हर बछर मनाया जाते। मनखे मन जागरूक हो ही तो नेत्रदान के संख्या बढ़ी और नेत्रहीन के जीवन में उजियारा आते।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है संगी। देखा आज के दौर में नेत्रदान अब्बड़ जरूरी हावे, राष्ट्रीय आवश्यकता भी हावे, और वही बात ला हमारे विशेषज्ञ भी कहते हैं। सर, लेकिन ये भी देखा जाते नेत्रदान ला लेके समाज में लोगन मन में काफी ज्यादा भ्रांति हावे, तो ये भ्रांति के बारे में बताइए।
1: हमार आँखी के सबसे बाहरी पटल ला स्क्लेरा कहा जाते, ऊपर एक भाग ला कार्निया कहा जाते, ये हर पारदर्शी होते, एकर दान ला ही नेत्रदान कहा जाते।
0: अच्छा,
1: जब कोई स्वस्थ मनखे के मृत्यु होते तब प्रशिक्षित नेत्र डॉक्टर या नेत्रदान टीम द्वारा कार्निया ला निकाला जाते। कार्निया ला निकाले के बाद ओला सुरक्षित लकठा के नेत्र बैंक में जमा किया जाते और जरूरतमंद कार्नियल ओपेसिटी के रोगी में प्रत्यारोपित करे जाते।
0: अच्छा,
1: नेत्रदान हर ऐसा दान है जोन ला केवल मनखे मन के मृत्यु के बाद ही करत बनते। हमर समाज में एक गलत भ्रांति फैली से कि नेत्रदान करे ले अगले जन्म में अंधा जन्म होते या नेत्रदान के आँखी हर खराब दिखते। ई हर केवल सामाजिक अंधविश्वास ए, एकर कोई सामाजिक और धार्मिक आधार नहीं है। एक मनखे के नेत्रदान करे ले दो मनखे के जीवन में उजियारा आते।
0: बिल्कुल सही कहा, और ये जो भ्रांति हावे संगी हो कार्यक्रम के माध्यम से हमन कहा था सिर्फ कार्निया के ही प्रत्यारोपण होते है ना सर, कार्निया के होते, पूरा आँखी के नहीं हो। और ऐसे बात नहीं है कि आप मन अभी नेत्र दान करिए तो अगले जन्म में भी आप मन के आँखी नहीं दिखे। सर, ये बताइए कि ये जो भ्रांति है तो इला तो हमन जाने, लेकिन आम जन नेत्र दान करना चाहते तो कौन कौन मन के एकर पात्रता रखते, कौन कौन मन के कर सकते?
1: ये हर बहुत सुंदर प्रश्न है। 5 बछर ले 60 बछर के कोनो भी मन के मृत्यु के बाद नेत्रदान कर सकत है। जोन ला बीपी हुई, शुगर, मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा ले रही या चश्मा पहने मन के भी अपन नेत्रदान कर सकत है। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जिसे कि रेबीज, टिटनेस, सांप के काटे मन के, जहर खा के मरे मन के, पानी में डूबे मन के, फांसी लगा के मृत्यु हुए मनखे, सेप्टिसिमिया, एड्स, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, आई कैंसर, ब्लड कैंसर, टीबी बीमारी ले मरे मनखे के आँखी हर नेत्रदान में उपयोगी नहीं रहे। कुल मिला के स्वस्थ मनखे के आँखी हर नेत्रदान में उपयोगी रथे। नेत्रदान हर मृत्यु के बाद 6 घंटा के भीतर होना बहुत जरूरी है।
0: तो खीतेश्वर गुप्ता जी, आप मन से हमन जानना चाहबो कि एकर प्रक्रिया कैसे होते, पात्रता तो हमन जान डारे कि कौन मन के पात्र।

0: लेकिन जोन मन के घोषणा पत्र भर दारिस की मोला नेत्र दान करना है तो ओकर प्रक्रिया ला बताइए।
1: हाँ, कोई मनखे के मृत्यु हो जाही त ओकर लगठा के रिश्तेदार, जिसे कि बेटा बेटी नाती भाई बहन या पड़ोसी मन ला नेत्र बैंक या जिला के नेत्रदान टीम ला सूचना देना है।
0: अच्छा,
1: सूचना मिले के बाद प्रशिक्षित नेत्र डॉक्टर की टीम हर नेत्रदाता के घर पहुंच जाते। नेत्रदान के पूरा प्रक्रिया हर मृत्यु के बाद 6 घंटा के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। नेत्रदाता के उत्तराधिकारी के सहमति होना बहुत जरूरी है। सावधानी बर नेत्रदाता की आँखी ला मृत्यु के बाद बंद कर देना है और बंद पलक में गीला रुई या फिर बर्फ के छोटा टुकड़ा रख देना है। अगर वहाँ पंखा रही तो पंखा ला बंद कर देना है। पंखा ला ओकरे बर बंद करना है कि आँख की नमी हर सूख जाते। और एसी और कूलर रही तो एसी कूलर ला चालू कर देना है। ओमे का एक कमरा ठंडा रहते और आँखी की नमी हर बरकरार रहते। नेत्रदान के पूरा प्रक्रिया हर मात्र 20 से 30 मिनट में हो जाते। कम समय लागे के कारण मृतक के अंतिम संस्कार में भी कोई देरी नहीं होए।
0: अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है संगियों। जो सावधानी अपनाना चाहिए, जो प्रक्रिया रही थी तेला खितेश्वर गुप्ता जी बताई है। सर, हमन आप मन से ये भी जानना चाहबो कि नेत्रदान का बड़ जरूरी है, हमारे समाज में एकर का भूमिका हो सकत है, का भूमिका हो ही एकर बारे में बताइए।
1: नेत्रदान महादान है, हमर समाज के सहयोग हर बहुत महत्वपूर्ण हावे। सबो मन के मन ला जीते जी नेत्रदान करे के संकल्प और मृत्यु के बाद नेत्रदान करना चाहिए। हमर देश में अभी के समय में 13 लाख कार्निया के अंधत्व ले प्रभावित मरीज हावे। देश में हर साल 1 लाख कार्नियल ट्रांसप्लांट के जरूरत हावे। जरूरत के हिसाब से नेत्रदान नहीं होते।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी देवा खितेश्वर जी। ये भी जानना चाहबो सर आप मन से कि नेत्रदान महादान के जानकारी हमन कैथन आओ करना चाहते आम मन के आम जन तो कहाँ संपर्क कर सकते।
1: नेत्रदान के जानकारी ला हमन हमर गांव के लगठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके पता कर सकत हन। शहरी अंचल के मनखे मन मेडिकल कॉलेज मा शासकीय चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करके पता कर सकत हैं। सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी मन ले भी जानकारी लिया जा सकत है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दे था कितेश्वर गुप्ता जी। और समाज में आज दरकार भी है नेत्रदान के, और एकर बर भी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाते। और ई बेरा मा आप मन के समाज ला का संदेश रही।
1: सबो श्रोता संगवारी मन ला मोर तरफ से ये संदेश है कि आप मन जीते जी अपन आँखी ला दान करे बर घोषणा पत्र भरें और मृत्यु के बाद नेत्रदान कर आप मन के नेत्रदान करे ले दृष्टिहीन के जीवन में उजियारा आही।
0: बहुत बढ़िया आप मन के संदेश विचार है संगी हो। नेत्रदान के प्रण करो, महादान हावे रक्तदान है, अंगदान है, ऐसे ही संगी हो नेत्रदान हावे। नेत्रदान तो ऐसे चीज हावे जिनला के हमारे मृत्यु के बाद हम इला दान करते हैं और हमारे घर परिवार के मनखे मन प्रक्रिया ला पूर्ण करते हैं। तो ये बीच में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में खितेश्वर गुप्ता जी आप मन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिड़मिड़ा में पदस्थ हवा सहायक नेत्र अधिकारी के रूप में आप मन आवा और सुघर जानकारी ला हमारे श्रोता संगवारी मन तक परोसा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।

हाँ, तो संगवारी हो, अभी हमन सुनेन सुख घर भेंटवार्ता नेत्रदान महादान के बारे में बढ़िया हमर खितेश्वर गुप्ता जी बढ़िया जानकारी देत रहिन। अब संगवारी हो, बेरा हो गिसना आज के टीप के कोती जाए के। तो आज के टीप के विषय हवे सतत आय के लिए पशुपालन को व्यवसाय की तरह अपनाए। संगवारी हो, पशुपालन ला सिरतोन में एक ठन बढ़िया व्यवसाय के रूप में अपना के आप मन हर महीना बने और सतत आय कमा सकत हवा। तो पशुपालन ला व्यवसाय के रूप में देना है, एकर बार ये बात के ध्यान रखना है कि नस्ल के सही चुनाव करना है। दूध बर बढ़िया नस्ल के गाय हवे गिर है, साहीवाल है, और भैंस में हवे मुर्रा, एकर चुनाव करो। और मांस और दूध दोनों बर बकरी पालन में हवे ब्लैक बंगाल और सिरोही, ये भी बहुत ही लाभदायक हवे। और एमन के उचित रख रखाव और शेड के निर्माण करो। पशु मन बर साफ सुथरा हवादार सूखा शेड बनावा। मौसम के मार

जाड़ घाम बरसात ले बचाए के पूरा व्यवस्था होय बर चाही। संतुलित खान पान खाली पैरा भूसा दे ले दूध हर नहीं बढ़े संगवारी हो। पशु मन ला हरा चारा दाना खली और मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज मिश्रण नियम ले देवाओ। समय में बीमारी ले बचाव। पशु मन ला समय समय में टीका लगवाओ और पेट के कीड़ा मारे के दवा देव ताकि बीमारी के खर्चा बाचे। और संगवारी हो आय बढ़ाए और व्यवसाय बढ़ाए के जो नवा रास्ता है ओला अपनावा। उत्पाद मन के वैल्यू एडिशन खाली दूध बेचे के जगह में दही घी पनीर खोवा और छेना बना के बेचे तो दुगुना मुनाफा होही। गोबर और गोमूत्र ले कमाई। गोबर ले जैविक खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट उपला या फिर गोमूत्र ले कीटनाशक बना के बाजार में बेचाओ। सरकारी योजना मन के लाभ उठावा। छत्तीसगढ़ सरकार के पशुपालन विभाग ले सब्सिडी लोन और प्रशिक्षण के लाभ उठावा संगवारी हो। और सतत आय बर पशुपालन ला व्यवसाय की तरह अपनावा और आमदनी कमावा। तो आवा संगवारी हो सुन लेबो एक ठनाव सुग्घर अकन के लोकगीत ला। ओकर बाद फिर चर्चा कोती आगू बढ़बो।

0: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनेन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, जेला गाय रिन है माधव चंद्राकर और मन के साथी मन।
1: शशि चवल, स्वागत संस्कार पटेल, निशा भुनेश्वर, श्रेया छोटी व अनुपमा यादव की ओर से।
2: शाखा यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हाँ तो संगवारी हो, देखा अभी हमन बूता काम करे जाथन तो सांप के काटने पर घबराए नहीं, शांत रहें, सुरक्षित दूरी बनाए, तुरंत अस्पताल जाएं। तो संगवारी हो, सांप के काटे ले हमला घबराना नहीं है, एकर से दूरी बना के रखना है, धैर्य रखना है और सुरक्षा सुरक्षित रहना है। और एकर पर बाँचे बर सबले पहली तो हमला प्राथमिक उपचार के जो जरूरी कदम है ओला अपनाना है। मरीज ला हमला शांत रखना है, घबराहट ले जो दिल के धड़कन तेज हो जाते, जेकर ले शरीर में जहर तेजी से फैलते, तो मरीज ला हमला लेटा देना है, बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देना है, सुरक्षित दूरी बनाए रखना है, सांप ला पकड़े या मारे के कोशिश नहीं करना है, खुद ला मरीज ला सांप के पहुँच ले दूर रखना है, प्रभावित हिस्सा ला स्थिर रखना है, जोन हाथ या पैर में सांप हर काटी से ओला मतलब दिल के स्तर से नीचे रखना है, ओला हिलन डुलन नहीं देना है, तुरंत अस्पताल जाना है, बिना समय गंवाए मरीज ला निकटतम सरकारी अस्पताल या फिर एंटीवेनम के सुविधा वाले मेडिकल सेंटर में जाना है, और हमला सावधानी भी अपनाना है, जैसे जोन ठी सांप चाबे रथे काटे रथे वो ठीक चाकू या ब्लेड से हमला चीरा नहीं लगाना है, मुँह ले जहर चूसे के प्रयास नहीं करना है, काबर के एकर से मरीज जो मदद करने वाला रथे ओला दोनों ला खतरा रहते, कस करके पट्टी ला नहीं बांधना है, रक्त संचार पूरी तरह रोके ले वो अंग के सड़े के खतरा बढ़ जाते, और जो झाड़ फूक या देसी इलाज में हमला समय नहीं गंवाना है, सांप के काटे के एकमात्र हमला अस्पताल जाना है। और संगवारी हो, दूसरे के जीवन में रोशनी लाएं, मृत्यु उपरांत नेत्रदान अपनाएं, नेत्रदान पखवाड़ा। तो देखा संगवारी हो, नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में अभी हमन भेंटवार्ता में सुनत रहन कहा, और दृष्टि वो माध्यम हवे संगवारी हो, जेकर ले हमन ये सुंदर संसार ला, रंग बिरंगी ये संसार ला, और अपन मन के हमन चेहरा ला भी देख सकत हन, लेकिन हमर बीच में कई ऐसा लोग मन भी हैं जो कार्नियल दृष्टिहीनता के कारण अंधेरा में जीवन जिए बर मजबूर हमें। तो संगवारी हो, हमन तो जीते जी कभी कुछ दान नहीं कर सकन, लेकिन मरे के बाद हमन ला अपन के नेत्र दान करना हवे, और नेत्रदान ले जुड़े कुछ सावधानी है, केवल कार्निया के उपयोग नेत्रदान में पूरा आंख निकाले के बजाय केवल पारदर्शी पुतली लही लिया जाते, चेहरा में कोई विकृति नहीं आए संगवारी हो, और एक मनखे के नेत्रदान करे ले दो लोगन मल्ला दो मनखे मल्ला रोशनी मिल जाते, और समय के सीमा यानी कि मृत्यु के 4 से 6 घंटा के भीतर नेत्रदान के प्रक्रिया पूरा हो जाते संगवारी हो, और सही दिनचर्या और योग के साथ रोग ना आए पास, हमला रोग हमार जो दिनचर्या है वाला सही करना है, संगे संग योग ला अपनाना है ताकि हमन रोग ले मुक्त रहन, समृद्धि का आधार वृक्षारोपण। तो संगवारी हो, हमार जो समृद्धि के आधार हवे वृक्षारोपण, वृक्ष ही सब हवे, तो हमला वृक्षारोपण करना हवे। तो संगवारी हो, मोर जाए के बेला हो गए कहा, तो जात जात जमो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन।
1: कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण अभी हो रहा था। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत। गैर फिल्मी गीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के गाए हुए इस गीत को। रचना है फैज अनवर की, संगीत निखिल विनय का।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन।

लकी अली के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल स्वर में वसंत देव के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम उत्सव।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: फिल्म संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं अभिजीत के गाए हुए इस गीत को। रचना है जावेद अख्तर की, संगीत जतिन ललित का, फिल्म का नाम यस बॉस।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में हसरत जयपुरी की शब्द रचना को। संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम जिद्दी।

0: लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक

0: हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले

0: वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
1: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म लहू के दो रंग से। इसे लिखा फारूक कैसर ने, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में घर एक मंदिर फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुर फिल्म का गाना। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत निदा फाजली का है, संगीत MM करीम का।

आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत आनंद मिलिन का है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

के एनसिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एनसिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे। पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एनसिंग को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदनलाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एनसिंग ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदनलाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एनसिंग को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदनलाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदनलाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जगह डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था।
1: अरे जिंदा तो है अभी। देख पंचनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ जल्दी।

0: ये काम तो खत्म हो चला। तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो, हाँ? ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ धुलाइयो भाई।
1: मगर कहाँ जाओगे वैजी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ। अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: नगीने शादी?
1: बैजी बैजी बैजी।
0: अरे कुछ कहेगा भी?
1: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
1: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो। क्यों बैजी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
2: बैजी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
1: बैजी भगवान देखो जरूर है।
0: क्यों?
1: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
2: बैठी है थोड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कूकाफ के परी को उठा ला।
3: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर

हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। की एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: मशहूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। विविध संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली के गाए हुए इस गजल से। कलाम है मीर तकी मीर का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए कॉलोनियल कजिन्स के स्वर में राजेश जौहरी और शिखा दत्ता के लिखे हुए इस गीत को।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम विविध संगीत में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं अकबर हैदराबादी।

0: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

उदित नारायण के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध। कार्यक्रम अनुरोध सुनने वाले सभी साथियों को आपके रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साव का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज आप अपने पसंद के नगमे सुनेंगे मेरे साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गुमराह से, स्वर महेंद्र कपूर का। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा, संतोषी रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से हमें पत्र लिखा है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कटी पतंग, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। पसंद आप सबकी है, इसके लिए हमें पत्र लिखा है इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज मुकेश और अंकिता साहित्य, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से पत्र आया उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका दिवाकर का, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हमें पत्र लिखा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डाली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, गुरामी डोंडी लोहारा बालो से यूसुफ नेताम, जोहत्रीबाई नेताम, कोमल नेताम, ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सरवा,

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संघर्ष से, और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल।

मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। ताजपुर मोरवा से हमें पत्र लिखा है भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। रामनगर रोड, शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग और मालती चौधरी ने।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: जरा नहीं

सीता और गीता, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, चांदनी चौक, गंडई, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक सेन। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल श्रीवास, हट्टी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्राय हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक का, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाव यादव, कुमारी, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मिलन से, आवाजें लता मंगेशकर मुकेश की हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यीशु अंशु गुप्ता, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सबाना आलम, चांदनी नाज, रुआ बांधा शनिचरी, भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन और शुभम जैन। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है ग्राम बोड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, कैदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु और ऋषभ सिंह। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

ऐसे साथी जो कार्यक्रम हमारा पहली बार सुन रहे हैं या वे साथी जिन्हें अपने पसंद के नगमे सुनने हैं, तो हमें खत लिखें या ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है srotarayagad@gmail.com और पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम अनुरोध द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़, पिन है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध, एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार

0: पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकेन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of